श्रोताओं, आपने ट्यून किया है विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी

0: पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
2: ये है विविध भारती।

तब और भी अधिक एक दूसरे को चाहने लगते हैं और करीब आते जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है बिना कहे ही सामने वाले की बात समझ जाते हैं। इसीलिए तो कहा है, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम वंदनवार में। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भजन।

ये भजन हमने सुना जिसे गाया आशा भोसले ने, मीराबाई ने लिखा और जयदेव ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदनवार में अगला भजन, बेला सावीर के द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया, कबीरदास के बोल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। सुबह के 6:45 एवं शाम के 6:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। श्रृंखला है शताब्दी की भक्ति रचनाएं। इसका पहला भाग आज हम सुन सकेंगे। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। सुबह के 7 का समय होगा भूले बिसरे गीत का। 7:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। 8 का समय होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर सुनेंगे त्रिवेणी। 8:30 का समय होगा चित्रलोक का। और सुबह के 9:30 पर एवं रात्रि के 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कि केंद्रित होगा गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी पर। दस बजे खुलेगा पिटारा। आज के मेहमान साहित्यकार लेखक मनोज रूपड़ा से ममता सिंह की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 11 का समय होगा रंग तरंग का। 12 सुनेंगे हिंदी समाचार और 12:05 पर सजेगी यादों की महफिल।

एक बजे सुरीला सफर, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2 बजे का समय होगा त्रिवेणी का। आलेख एवं स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। दोपहर 2:15 पर होंगे समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, और 3 बजे श्रोताओं और सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली। चार बजे का समय होगा हेलो फरमाइश का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6 बजे सुनेंगे हिंदी समाचार और 6:05 पर पुनः सुनेंगे तराने नए पुराने। 7 बजे का समय होगा जय माला का। 7:45 पर इंद्रधनुष, इनसे मिलिए टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत, और इसका दूसरा भाग आज हम सुन सकेंगे। प्रस्तुतिकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात्रि 8 बजे हवा महल, झलकी अंगारे, लेखक सोमनाथ नागर, निर्देशन सत्येंद्र शरत। रात 8:15 पर चित्रलोक, और 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम छाया गीत, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। दस बजकर 30 मिनट पर ढलती जाए रात, और 11 बजे रंग तरंग।

कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में भयानक विनाश लीला मचा रखी है, ये देख श्री राम ने सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण को सेना का भार सौंपा और शारंग धनुष संभालकर शत्रु सेना का मान मर्दन करने चले। धनुष की एक टंकार मात्र से शत्रुओं के कानों के पर्दे फट पड़ने की नौबत आ गई। फिर उन्होंने 1,00,000 बाण छोड़े, जिनसे महाबली राक्षस योद्धाओं के हाथ, पैर और सिर कटने लगे। लेकिन मायावी राक्षस फिर संभल कर उठते हैं और युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। श्री राम के बाण आसुरी सेना का संहार करके तरकस में वापस लौट आते हैं। कुंभकर्ण ने भयानक सिंहनाद किया, विशाल पर्वत उखाड़कर वो वानर सेना

पर फेंकने लगा। श्री राम के बाण उसका शरीर वेद कर दूसरी ओर निकल जाते हैं। उसके भीम काय काले शरीर से बहता रक्त ऐसा दिख रहा है जैसे काजल के पर्वत से गेरुए रंग की धाराएं प्रवाहित हो रही हों। कुपित कुंभकर्ण दुगने वेग से वानर भालुओं को मारता काटता एक पर्वत लेकर श्री राम की ओर दौड़ा ही था कि उन्होंने उसकी भुजा ही काट डाली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत के साथ स्वर हमारे मन को शांति, शीतलता और उल्लास प्रदान करते हैं, और जब इस संगीत में भक्ति रस की चाशनी घुल जाए तो मन भाव विभोर होता है। ऐसी ही भाव विभोर करने वाली एक श्रृंखला संगीत सरिता में सुनते हैं, शताब्दी की भक्ति रचनाएं। इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत जब साधना बन जाए और शब्द आत्मा की आवाज बन जाए तो एक कलाकार सिर्फ गायक और संगीतकार नहीं रहता, बल्कि वो कला और संस्कृति का संवाहक

0: जाता है। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने ऐसे ही एक विलक्षण कलाकार को आमंत्रित किया है। वो गुणी कलाकार हैं पद्मश्री शेखर सेन। आप हैं गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, लेखक और निर्देशक और बेहद विनम्र इंसान। आपकी बातों से जहां ज्ञान की सरिता बहती है, वहीं हास्य और व्यंग्य का चुटीला झरना भी बहता है। शेखर सेन मध्य प्रदेश, जो अब छत्तीसगढ़ है, के रायपुर के संगीत के संस्कार भूमि में पले बढ़े। आपने अपनी माँ डॉक्टर अनीता सेन से और पिता डॉक्टर अरुण कुमार सेन से संगीत की तालीम ली। माता पिता दोनों ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतज्ञ थे। शेखर सेन ने अपनी प्रतिभा से संगीत की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। 200 से ज्यादा संगीत एल्बम के साथ उन्होंने अपनी रचनात्मक यात्रा को आगे बढ़ाया और फिर रंगमंच को अपनी साधना का माध्यम बनाया। उनकी अनूठी पहचान है उनकी एकल नाटक प्रस्तुति, सूर, कबीर, तुलसी, विवेकानंद और भी अनेक प्रस्तुतियां, जहां वे स्वयं अनेक चरित्र और भावों को खास अंदाज में जीवंत कर देते हैं। शेखर सेन ने मीराबाई से लेकर महादेवी वर्मा तक रसखान, रहीम, बिहारी, सूर, कबीर, तुलसी और भी अनेक कवियों और संतों की रचनाओं को उन्होंने स्वर दिया है। शेखर सेन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और अन्य अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। शेखर सेन जी संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के रूप में भी उन्होंने 4 वर्षों तक काम किया। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, शताब्दी की भक्ति रचनाएं। इस श्रृंखला को सुरीली कड़ियों में पिरोने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं गायक, संगीतकार, गीतकार और अभिनेता पद्मश्री शेखर सेन। शेखर दादा, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपको भी और संगीत सरिता के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम।
0: और अब हमने तबले पर संगत करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है आशीष बिस्वास जी को। श्रोताओं से आपका हम परिचय करा दें। आशीष जी देश विदेश के अनेक संगीतमय कार्यक्रम में अपने तबला संगति से लोगों को लुभाया है, सम्मोहित किया है। और आशीष जी ने श्री अभिजीत बैनर्जी से तबले की तालीम ली है और जब इनकी उंगलियां तबले पर थिरकती हैं तो हम सब सम्मोहित होकर देखते रहते हैं कि ये बिल्कुल नदी की धारा की तरह बहती है। तो आशीष जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: आप सभी को आशीष बिस्वास का नमस्कार।
1: जब इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की तो हमने सोचा कि क्यों ना एक शताब्दी का पूरा भक्ति संगीत की यात्रा हमारे साथ साथ हमारे श्रोता भी करें और बहुत सारी चीज़ें जो कहीं पर इतिहास के खानों में छुप के रह गई हैं उनको वहाँ से निकाला जाए और एक बार फिर से हम उन सभी अपनी अद्भुत रचनाओं को याद करें और उससे और समृद्ध हों। तो सबसे पहले मैं शुरुआत में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 1922
0: जी,
1: महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर जो अब बहुत बड़ा हो गया है, नाशिक। वहां पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने एक आश्रम की शुरुआत की, स्थापना की, राम नाम आधार आश्रम
0: जी।
1: और मन में उन्होंने संकल्प लिया उस छोटे से कमरे में कि मैं केवल भगवान राम पर आधारित भजनों की रचना करूंगा
0: जी।
1: उनको कोई भगवत प्रेरणा हुई थी, बड़े संत हृदय व्यक्ति थे और वहाँ पर उन्होंने उस छोटे से आश्रम में बैठकर बहुत सारी रचनाएं बनाई। मैं आपको कुछ नाम ले रहा हूँ तो आपको एक अनुमान होगा कि क्या क्या अद्भुत रचनाएं नासिक के उस छोटे से कमरे में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा रची गई।
0: और पंडित जी को हम सब ने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है, संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्हीं से ली हम सभी श्रोताओं ने।
1: बिल्कुल। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चलो मन गंगा जमुना तीर
0: जी,
1: मत जा जोगी
0: क्या बात,
1: जानकी नाथ सहाय करें तब, या जो सबसे प्रसिद्ध धुन है जो बाद में गांधी जी ने भी इसको गाया, रघुपति राघव राजा राम,
0: क्या बात है।
1: इन सब रचनाओं की उन्होंने न केवल उनको स्वरबद्ध किया रागों का आधार लेकर, उन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाया और उस कालखंड में जिस समय माइक नहीं हुआ करता था
0: जी,
1: उस समय उन्होंने 20-20 हजार

0: 25,000 लोगों के सामने कितनी बड़ी आवाज उनकी रही होगी,
1: बिल्कुल
0: उनके सामने वो गाते थे और लोग उनके साथ गाते थे। और ये उनकी संगीत रचनाओं का जादू है कि आज इतने वर्षों के बाद, 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो रचनाएं हमारे डीएनए का अंग बन चुकी हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: पहली रचना मैं चाहूंगा कि हम लोग आप विविध भारती के माध्यम से सुनाएं, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया।
1: क्या बात।
0: मैं केवल थोड़ा सा हमारे श्रोताओं की सुविधा के लिए राग का परिचय दे रहा हूँ। राग मिश्र गारा में

0: क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: पलुस्कर जी के ही सुपुत्र डीवी पलुस्कर जी की आवाज में आप ये भजन सुनाए।
0: पंडित डीवी पलुस्कर के स्वर में ये रचना सुनते हैं और श्रोताओं को भी सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल।

0: शेखर दादा, अब बताइए कि जो अभी रचना हमने सुनवाई, इस रचना के बाद अभी हम क्या सुनवाएं?
1: अगली रचना को हम सुने उसके पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी संगीत को प्यार करने वाले श्रोता हैं और जितने भी संगीत के विद्यार्थी हैं
0: जी,
1: उनकी जानकारी में भी ये बात आए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने 1901 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की
0: जी,
1: और आपको आश्चर्य होगा कि लाहौर में की 1901 में
0: जी,
1: और फिर उसका मुख्य केंद्र बना मुंबई में ओपेरा हाउस में
0: जी,
1: और 1908 में मुंबई के गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना हुई, और इसलिए हम सब मुंबई वासी जो हैं वो ओपेरा हाउस का जो चौक है उसको पलुस्कर चौक इस नाम से हम जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पंडित जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, पर ये जो रचना मैं चाहता हूँ वो हमारे अंतर मन में इतनी घुली हुई है कि मैं जानता हूं कि जिस समय ये रचना आप सुनेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप पलुस्कर जी के ही सुपुत्र डीवी पलुस्कर जी की आवाज में आप ये भजन सुनाएं, तो मैं चाहता हूं कि वो श्रोता भी साथ साथ इसके गुनगुनाने लगें। और ये राग मिश्र पहाड़ी में है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
0: जी।
1: ये रचना आप सुने डीवी पलुस्कर जी के मधुर स्वरों में।

0: शेखर दादा, हम राम रतन धन पा रहे हैं, साथ में हम ज्ञान के रत्न, ज्ञान के मोती भी पाएंगे आपसे बहुत सारे, ये उम्मीद है। हम जरा अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहते हैं कि क्या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किसी स्वरलिपि की पद्धति की शुरुआत की?
1: हमारे यहाँ दो संगीत स्वरलिपि पद्धतियां बनाई गई। पहली थी जो भातखंडे जी द्वारा बहुत उसका प्रचार किया गया, वो आसान है। पलुस्कर जी ने जो संगीत लिपि बनाई वो कठिन तो है, पर वो सांगीतिक दृष्टि से बिल्कुल संगीत के व्याकरण को मानती हुई है कि कहाँ पर तीन मात्रा, कहाँ चार मात्रा, कहाँ एक मात्रा, तो उसके उन्होंने चिन्ह अलग बनाए। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि जो स्टाफ नोटेशन था उससे भी वो प्रेरित थे कि एक ये ऐसा चिन्ह होगा तो चार मात्रा का होगा, ऐसा चिन्ह होगा तो आठ मात्रे का हो, जो स्टाफ नोटेशन में, वेस्टर्न नोटेशन में हम लोग करते हैं। तो पलुस्कर जी का जो नोटेशन है वो बहुत ही वैज्ञानिक है
0: जी जी,
1: पर भातखंडे जी का जो नोटेशन है वो बहुत सरल होने के कारण उसका ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। हमारे लिए दोनों ही स्वरलिपियां अच्छी हैं। ये वैसा ही है जैसे माँ अच्छी है या पिताजी अच्छे हैं, तो दोनों ही अच्छे हैं, जिसको जिसमें सुविधा हो
0: जी।
1: पर प्रचारित जो ज्यादा है वो भातखंडे जी वाली स्वरलिपि है
0: जी। बहुत अच्छी जानकारी थी और विद्यार्थियों का जिक्र आपने किया था, तो हमें लगता है कि संगीत सरिता कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक पाठशाला की तरह है। शेखर दादा, अब संगीत सरिता कार्यक्रम की इस कड़ी के लिए हम बातों को अपने समेट रहे हैं और कल के संगीत सरिता में कुछ नई बंदिशें लेकर आएंगे, कुछ नई भक्ति रचनाएं लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सिंह। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की पहली कड़ी। तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम. भूले बिसरे गीत प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद.
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए शुभारंभ करते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का इस गीत के साथ, जिसे लिया गया है फिल्म परछन से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, नूर लखनवी ने इसे लिखा है और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक दिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार दिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: नाची गाए सबके मन बहलावा रे भैया।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में माशुका फिल्म से सुरैया की आवाज में यह गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम जारी रहेगा। सवेरे 7:20 से हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे मराठी भाषा में प्रादेशिक समाचार।

हम सुन रहे थे आन फिल्म से यह गीत, शमशाद बेगम की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोलों के साथ, जिसे संगीतबद्ध किया है नौशाद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का अगला गीत, जो कि है फिल्म तुलसीदास से आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं जी एस नेपाली, संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ। सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है फूले बिसरे गीत।

घूंघट बोला अंजन, भाभी ने जो घूंघट खोला।

हम सुन रहे थे सुबह का तारा फिल्म से यह गीत उषा मंगेशकर की आवाज़ में, नूर लखनवी के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अगला गीत शबाब फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार है शकील बदायनी और संगीतकार है नौशाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम है राही प्यार के में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत यशुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। इंदिवर ने जिसे लिखा, उषा खन्ना ने जिसे संगीतबद्ध किया और हमने लिया फिल्म साजन बिना सुहागन से।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक दिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार दिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
0: अब सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के।

हम सुन रहे थे ये गीत लहू के दो रंग फिल्म से। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित ने इसे गाया, फारूक कैसर ने इसे लिखा और बप्पी लहरी ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के में अगला गीत, जो कि है जानी दुश्मन फिल्म से। किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, वर्मा मलिक के हैं बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

0: किया मामा।
1: भागो।
2: निर्मा नमक
3: बच गए।
4: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
4: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
6: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के। आइए सुनते हैं अगला गीत घर फिल्म से। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें हैं। इस गीत को बोल दिए हैं गुलजार ने और संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिल

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
3: पेंटर बाबू
2: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
4: दिल तो पागल है,
2: दुश्मन
5: चिट्ठी न कोई संदेह,
2: गदर एक प्रेम कथा,
6: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
2: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
7: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
2: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के।

देवता फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में गुलजार के बोल आरडी वर्मन के संगीत के साथ। इसी के साथ हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
2: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
3: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
3: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
4: आयुष्मान भारत पीएम जय
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
1: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के

0: सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
2: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
3: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
4: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
3: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती जा रही हैं, जीवन शैली बेहतर हो रही है और हमारी जीवन अपेक्षा बढ़ती चली जा रही है, यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा है, बुजुर्गों का हिस्सा है। बुजुर्ग हमारे समाज का एक बहुत जरूरी अंग है। उन्होंने अपनी एक शानदार जिंदगी बिताई और अब वो सेवानिवृत्त जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें भी अपना प्यार चाहिए, उन्हें भी परिवार के लोग चाहिए जो थोड़ी देर उनके साथ बैठें, बातें करें, उनकी समस्याओं के बारे में, दुनिया भर के बारे में उनसे विचार विमर्श करें और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें।

बुजुर्गों को सिर्फ अपना समय देने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ जिस तरह से तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उन्हें इस पूरी धारा में शामिल करने की जरूरत है। ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी थोड़ी देर उनके पास बैठे, उन्हें मोबाइल चलाना, मोबाइल की नई तकनीक सोशल मीडिया सिखाए, उन्हें कंप्यूटर या टैबलेट चलाने के गुर सिखाए, उसकी ट्रिक सिखाए, और उन्हें ये भी बताए कि कैसे वो अपने जीवन को रचनात्मक बना सकते हैं। कई घरों में ये भी देखा गया है कि नई पीढ़ी के लोग पत्रिकाओं को पढ़कर अपने बुजुर्गों को सुनाते हैं। ये भी एक तरीका है बुजुर्गों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का। अब हमें ये सोचना है कि हम अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों के साथ किस तरह अच्छा बर्ताव कर सकते हैं और उनकी उंगली पकड़कर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ सकते हैं।

जिंदगी को जीकर ही समझा जा सकता है। बुजुर्गों के पास जीवन का एक विराट अनुभव है और ये अनुभव नई पीढ़ी के लिए एक बहुत जरूरी मार्गदर्शक बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बुजुर्गों को दरकिनार न करें, हाशिए पर न रखें, बल्कि उनके अनुभवों से सीखें, क्योंकि दुनिया की जैसी समझ बुजुर्गों के पास होती है वो नई पीढ़ी के पास आ ही नहीं सकती। उन्होंने जिंदगी का एक लंबा सफर बीहड़ रास्तों पर तय किया है, अपनी जेब में अनुभवों को जमा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद भी लेना है, उनके अनुभवों से सीखना भी है और उनके साथ बैठकर समाज को बेहतर बनाना है।

ये थी आज की त्रिवेणी। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। हमें अपने आसपास के बुजुर्गों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी बात के साथ इजाजत लेता हूं, मैं आपका दोस्त यूनुस खान।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से बोल रहे हैं 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सवेरे के 8:30 होने वाले हैं। राष्ट्रीय मराठी समाचार आप सुनेंगे अब से बस कुछ ही देर बाद, जिन्हें हम अपने पुणे केंद्र से रिले कर रहे हैं।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुष। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: अब सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक और आइए हम बात कर रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम में डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में। डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने होम रूल आंदोलन 1916 में जिसे आरंभ किया था श्री बाल गंगाधर तिलक ने, उनके साथ मिलकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना करवाई जिससे भारतीयों ने स्वशासन की मांग राष्ट्रीय स्तर पर गति दे सके। इसके साथ ही वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी सन 1917 में चुनी गईं। इसके साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे योगदान दिए हैं, जैसे 1898 में वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। वो कॉलेज कौन सा था, क्या बात थी, इसके बारे में बात करेंगे इस छोटे से विराम के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है चित्रलोक। हम बात कर रहे थे डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया, उसके साथ ही शिक्षा के लिए भी योगदान दिए। सन 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो आगे चलकर पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आधार बना। उन्होंने भारत में महिलाओं को शिक्षा के प्रसार के लिए भी जोड़ने के लिए बहुत सारा कार्य किया। उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1907 में मद्रास चेन्नई में स्थित एक थियोसोफिकल सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, जिसके द्वारा उन्होंने भारतीय दर्शन, वेद व उपनिषदों पर के विचारों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। इसके साथ ही कई सारी समाचार पत्र और पत्रिकाओं में भी उन्होंने अपना संपादन, प्रकाशन तथा लेखन का कार्य किया, जिसमें से न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे प्रमुख समाचार पत्र हमारे समक्ष है। वह हमेशा कहा करती थी कि भारत केवल एक भूभाग नहीं है, यह एक जीवंत संस्कृति और आध्यात्म की भूमि है। जब तक भारतीय अपनी प्राचीन जड़ों और स्वतंत्रता को नहीं पहचानते, तब तक वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। एनी बेसेंट का जीवन निस्वार्थ सेवा, बौद्धिक स्पष्टता और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की एक अद्भुत मिसाल है। हम उन्हें आज उनके जन्मदिवस पर याद करते हैं इस गीत के साथ।

डॉक्टर एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत योगदान दिया और उसके साथ ही शिक्षा के कार्यक्रम में भी उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए हम याद करते हैं। और कहीं पढ़ा था कि लहजे को ज़रा देख जवां है कि नहीं, बालों की सफ़ेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ बालों की सफ़ेदी आ जाए तो बुढ़ापा नहीं होता। कई लोग अपने जीवन में एक लंबे अरसे तक कार्य करते रहते हैं। आज है वरिष्ठ नागरिक दिवस और हम सभी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि आज का दिवस उनके लिए मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, स्वास्थ्य, भलाई और समाज में उनके अमूल्य योगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1990 में इस दिन की घोषणा की और यह दिन लगातार मनाया जाने लगा। हालांकि बात सच है, जो बुज़ुर्ग हैं वह बुज़ुर्ग नहीं हैं, वह बहुत सारी संभावनाओं और बहुत सारी एक्सपीरियंस का भंडार है। तो चलिए उनसे हम शिक्षा लेते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे बुढ़ा होगा तेरा बाप फिल्म से यह गीत अमिताभ बच्चन की आवाज़ पे। विशाल ने इसे लिखा और विशाल शेखर ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
4: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
6: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में। आज है वरिष्ठ नागरिक दिवस। अरे होते हैं जिनके सफेद बाल, वो वक्त की पहचान होती है। होता है जो उनका अनुभव, उसको सफेद बाल उनकी निशानी होती है। बिल्कुल सही बात कही है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 में इस दिवस का एक मुख्य विषय रखा गया है। विषय है द एज ऑफ लॉन्गेविटी, रीथिंकिंग सिस्टम फॉर लॉन्गर लाइफ। इसका अर्थ है कि दीर्घायु का युग, लंबी आयु के लिए व्यवस्थाओं का पुनर्विचार। इस विषय का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन प्रत्याशा में बहुत सुधार हो रहा है तो लोग लंबी उम्र तक जी रहे हैं। इस थीम पर जोर दिया जाता है कि आप स्वास्थ्य सेवा दें, सामाजिक सुरक्षा दें, आवास दें, कार्य प्रणाली इतने सुंदरता से तैयार करें कि किसी व्यक्ति को आयु वर्षों की गिनती में ना रहे बल्कि स्वस्थ जीवन सक्रिय और गरिमापूर्ण रहे। और हमारे जो समाज में बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करने का कर्तव्य हमारा बनता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर श्रम किया है और उस श्रम से निकला है अनुभव और वो अनुभव बनता है हमारे लिए मार्गदर्शन। इसलिए हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल करनी।

करनी चाहिए, वह वित्तीय आत्मनिर्भर हो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्ग हमारे समाज की मजबूत नींव है, मार्गदर्शक है। उन्हें हमें केवल सुविधाएं नहीं देना है बल्कि सच्चा अपनत्व, सम्मान और समय, जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, वह भी देना है। ढेर सारा प्यार हमें पहुंचाना है उन तक। आइए सुनते हैं हमारे सभी बुजुर्गों के लिए ये गीत।

0: हम सुन रहे थे 102 नॉट आउट फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में यह गीत, जिसे लिखा हिरल ने और सलीम सुलेमान ने इसे संगीतबद्ध किया। अब लेते हैं छोटा सा विराम।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: फसा अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है चित्रलोक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन एक बार और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज है श्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि। अब ये वीर चंद्र गढ़वाली जी कौन थे? ये एक ऐसा नाम है जिसने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्म लिया और अपने निर्भीक और स्वाभिमान स्वभाव के कारण इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना बड़ा सारा योगदान दिया। अब इनका जो पहली जो भर्ती हुई वह ब्रिटिश सेना के रॉयल गढ़वाल राइफल्स में हुई। यहाँ पर उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। गढ़वाली यह नाम इतिहास के पन्नों में इस तरह से अमर हो गया क्योंकि इस नाम ने पेशावर कांड के नाम से इस नाम को जाना जाने लगा, यानी 23 अप्रैल 1930 की उस तारीख के साथ नाम है पेशावर।

पेशावर कांड। पेशावर का वह किस्सा अख्वानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार के साथ निहत्ते शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय ब्रिटिश कैप्टन के रिकेट ने गढ़वाल राइफल्स को निहत्ते सत्याग्रहियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का एक आदेश दे दिया। उस समय हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली अपनी जान और भविष्य की परवाह किए बिना बड़ी कड़कती आवाज में उन्होंने चिल्लाया और हुक्म दिया, गढ़वाली सीज फायर, गढ़वाली हम निहत्थों पर गोली नहीं चलाते। सैनिकों ने उनकी बात मानी और बंदूकों की नाल को नीचे कर लिया। ऐतिहासिक इनकार के बाद ब्रिटिश हुकूमत को तो उन्होंने हिला दिया। इसके बाद उन पर कोर्ट मार्शल चला, उम्र कैद की सजा हुई, 14 वर्ष उन्हें जेल में बिताने पड़े। बाद में महात्मा गांधी ने उनकी निष्ठा और साहस से प्रभावित होकर कहा था, यदि मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता तो देश कब का स्वतंत्र हो गया होता। 1 अक्टूबर 1979 को राष्ट्र का यह महान सपूत चिरनिद्रा में लीन हो गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली केवल एक फौजी नहीं बल्कि विवेक और राष्ट्र प्रेम के वो प्रतीक थे जिन्होंने सिखाया कि देशभक्ति के प्रति निष्ठा किसी औपनिवेशिक हुक्म से बड़ी होती है। उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें सादर नमन करता है।

0: हम सुन रहे थे दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज़ में, जिस गीत को लिखा प्रसून जोशी ने, एआर रहमान ने जिसे संगीतबद्ध किया, हमने जिस फिल्म में इसे लिया गया है वह फिल्म है रंग दे बसंती। आइए सुनते हैं ये एक संदेश।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंग कर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। अब चित्रलोक पे वक्त है कि एक कहानी छोटी सी आपके साथ साझा की जाए। कि एक समय की बात है, बहुत धनी और जिज्ञासु राजा थे, तो उनकी एक आदत थी कि वो परीक्षाएं लिया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और वह वहीं एक दूसरे पत्थर के पीछे छिप गए अपने मंत्रियों के साथ में, ये देखने के लिए कि उस विशाल पत्थर के आसपास से गुजरने वाले निकलने वाले लोग क्या करते हैं। अब वहाँ से कई लोग निकले तो सबसे पहले कुछ धनी व्यापारी और दरबारी निकले, उन्होंने पत्थर को तो हटाया नहीं और अगल बगल से निकल गए। और थोड़ी देर के बाद में वहाँ से निकले कुछ ऐसे लोग जो सामान्य थे, तो उन्होंने बड़ी गुस्सा किया, बड़ा गंदा गंदा बोला। उन्होंने कहा, बड़ा ख़राब राजा है, इतना बड़ा पत्थर रखा है, इसे भी नहीं हटवा सकता। क्या काम का राजा है, क्या काम के दरबारी हैं, बस हमसे तो कर लिया जाता है, हम कर दिए रहते हैं पर काम कुछ नहीं होता। राजा ने इस बात को भी सुना और उसके बाद में पर किसी ने पत्थर नहीं हटाया। अब थोड़ी देर के बाद में एक किसान वहां से निकलता है। उस किसान के हाथों में बहुत सारी सब्जियां हैं जिसे वह बाजार लेकर जा रहा है बेचने के लिए, लेकिन वह देखता है बीच में एक बड़ा पत्थर है। वह उस पत्थर को हटाने के लिए अपने हाथ की सब्जियां पहले नीचे रखता है और उसके बाद उस पत्थर को हटाने लगता है। पत्थर हटाने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि बड़ा पत्थर है, पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन उस पत्थर को धीरे धीरे करके वह लुढ़काकर सड़क के उस ओर रख देता है। और जैसे ही वह पत्थर हटाता है, उस पत्थर के नीचे उसे एक थैला मिलता है और उस थैले को खोलते ही वह पाता है कि उसमें कई सारे सोने चांदी के सिक्के रखे।

0: हुए हैं और वह खुश हो जाता है। तभी उसे एक चिट्ठी भी मिलती है और उस चिट्ठी को जैसे ही वह पढ़ता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह चिट्ठी सामान्य चिट्ठी या सामान्य पत्र नहीं था, राजा के द्वारा दिया गया पत्र था और उसमें यह लिखा था कि आपने इस सम्मान को चुना है क्योंकि आपने देश की बाधाओं को हटाने का प्रयास किया है, तो राष्ट्र देश आपके लिए सम्मान रखता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे पत्थर हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे शहर में, कभी कभी हमारे देश में मिलते हैं और हम उन्हें हटाने की बजाय उनसे ही लड़ बैठते हैं। विचार कीजिएगा, हमने कितने पत्थर हटाए, इस बात का विचार करना है ताकि राष्ट्र सुरक्षित हो सके। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: लेते एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में हमने सुनाई आपको एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी कोई छोटा बड़ा पत्थर हमारे रास्ते में आए तो उसे हम खुद हटा लेंगे, ना कि हम दूसरों को उस बात के लिए कोसेंगे, है ना। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत भाग मिल्का भाग फिल्म से, श्रेया घोषाल और जावेद बसीर ने इसे गाया, प्रसून जोशी के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत है। हम आज का दिवस यानी 1 अक्टूबर का दिवस बड़ी प्रसन्नता के साथ मना रहे हैं, क्योंकि आज एक और बड़ा प्यारा सा दिवस है, वह है मिलिट्री नर्सिंग दिवस। और आज हुई थी मिलिट्री नर्सिंग की स्थापना। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की स्थापना का दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 1926 को भारतीय सेना के तहत एक स्थायी नर्सिंग सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी, जिसे उस समय इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का नाम दिया गया था। यह इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 1 अक्टूबर 1926 से आरंभ हुई। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस विद अ स्माइल, यानी मुस्कुराते हुए अपना कार्य करना। महत्व की बात यह है कि भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी और पूर्णतः महिला अधिकारी कोर में से एक संस्था यह है, जो युद्ध में और शांति में दोनों समय सैनिकों और उनके परिवारों की चिकित्सा की सेवा के लिए समर्पित रहती है। तो हमारी ओर से मिलिट्री नर्सिंग दिवस पर मिलिट्री नर्सिंग दिवस में काम करने वाली प्रत्येक महिला को, अब तो पुरुष भी उसमें होंगे, उन सभी को बहुत सारी बधाइयाँ और धन्यवाद सेवाओं के लिए।

हम सुन रहे थे ये गीत द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से एआर रहमान सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में समीर के बोल और एआर रहमान के संगीत के साथ। हम लोग कई बार कई लोगों को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इंसान, इसका व्यवहार ऐसा ही होगा और इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये गरीब ही होगा। अब एक छोटी सी घटना घटी कि एक बालक आइसक्रीम लेने के लिए गया और वहाँ पर पहुँचा तो उसने पूछा कि सबसे सस्ती आइसक्रीम कौन सी है, तो उसने कहा 50 रुपये वाली। अब ये जो महिला थी वो उसको आइसक्रीम देने के लिए खड़ी हुई, तो उसने कहा कुछ और है जो इससे सस्ता है, तो उसने कहा हाँ एक 35 रुपये वाली है। इस बार उसका रवैया थोड़ा कड़क था और उसने उस कड़कता के साथ उस बालक को कहा हाँ 35 रुपये की है, चाहिए है तो लो नहीं तो जाओ यहाँ से। उस बालक ने चुपचाप उस आइसक्रीम को ले लिया, आइसक्रीम ले रहा है, खा रहा है, वो महिला उसे देख रही है और बार बार थोड़ा चिढ़ भी रही है, लेकिन उस चिढ़न के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है। कारण, जब वह बालक उस महिला को उस आइसक्रीम का पैसा देने आता है तो वह उसे 50 रुपये ही देता है, कहता है 35 रुपये आइसक्रीम के और 15 रुपये हमारी तरफ से आपके लिए। वह महिला निशब्द हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती है। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को जज ना करें, कभी किसी को किसी की बात किसी को लेकर निर्णयात्मक रूप से ना पहुंचे, पहले समझें, जानें, विचारें। आज के चित्रलोक में बस इतना ही, आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे दम लगा के हईशा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में वरुण ग्रोवर के बोल और अनु मलिक के संगीत के साथ यह गीत आज्ञा दीजिए कार्यक्रम चित्रलोक से। नमस्कार।

है भारत का सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें

जिसने भी सचिन देव बर्मन का संगीत सुना वो उस संगीत के माधुरी में भीग कर वाह कर उठा। दशकों पहले रचा गया उनका संगीत आज भी जवां है, हसीन है।

0: प्यार के मन।
1: हिंदी और बांग्ला की 100 से भी अधिक फिल्मों के लिए संगीत सृजन करने वाले सचिन देव बर्मन संगीतकार बनने से पहले कोलकाता रेडियो स्टेशन पर गाया करते थे। उनकी गायी रचनाओं पर बांग्ला लोक संगीत और भारतीय सुगम शास्त्रीय संगीत का प्रभाव झलकता था। सन 1932 में रिलीज हुआ था सचिन देव बर्मन की गायी रचनाओं का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर सन 1906 को कोमिला में हुआ था। उनके पिता नवद्वीप चंद्र देव बर्मन और मां निरुपमा देवी का संबंध राज घराने से था। सचिन देव बर्मन अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। कोमिला के विक्टोरिया कॉलेज से बीए करने के बाद सचिन देव बर्मन ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। 1925 से 1930 के बीच उन्होंने गायक मन्ना डे के चाचा केसी डे से संगीत की शिक्षा ली और कालांतर में भीष्मदेव चट्टोपाध्याय से। इसके बाद संगीत जगत के कई और उस्तादों से संगीत सीखा, जिनमें उस्ताद बादल खां और उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब प्रमुख हैं। गायक के रूप में बांग्ला में उन्होंने 131 गीत गाए। म्यूजिक कंपोजर के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई थी बांग्ला नाटक सती तीर्थ और जननी से। सन 1937 में उन्हें पहली बार बांग्ला फिल्म राजगीव में संगीत देने का अवसर मिला। सन 1933 में उन्हें यहूदी की लड़की में पहली बार गाने का मौका मिला, लेकिन किसी कारण से उनके गाए गीत को रद्द कर वही गीत पहाड़ी सान्याल से गवाया गया। सन 1944 में सचिन देव बर्मन फिल्मिस्तान के शशधर मुखर्जी की सलाह पर मुंबई आ गए। शशधर मुखर्जी ने सचिन देव बर्मन को अशोक कुमार अभिनीत फिल्म शिकारी और फिल्म 8 दिन में संगीत देने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला सन 1947 में आई फिल्म दो भाई में। मेरा

0: बंगाली धोती ढीली ढाली, रास्ते में मिला एक बंगाली दर्शन का अभिलाषी। वो कहने लगा
1: क्या?
0: वो कहने लगा जल खाबे रसगुल्ला खाबे, और कहने लगा

बीच में एक समय ऐसा भी आया जब सचिन देव बर्मन का मुंबई के फिल्म जगत से मोह भंग हो गया था और वो कोलकाता वापस लौट जाना चाहते थे। शुक्र है ऐसा नहीं हो पाया और सचिन देव बर्मन मुंबई में ही रुक गए भविष्य की कालजयी।

देव आनंद अभिनीत नवकेतन की जिन अन्य मशहूर फिल्मों में सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया उनके नाम हैं टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, काला पानी, मुनीम जी और पेइंग गेस्ट।

0: नहीं।
1: देव आनंद और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म काला बाजार में भी सचिन देव बर्मन ने सुमधुर संगीत दिया। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: खोया खोया जा।
1: फिल्म गाइड, देव आनंद और वहीदा रहमान के शानदार अभिनय, विजय आनंद के कसे हुए निर्देशन, शैलेंद्र के गीतों और सचिन देव बर्मन के सुरीले कालजयी संगीत के लिए आज भी भारतीय सिनेमा की अग्रणी फिल्मों में शामिल है।

भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार बिमल रॉय के साथ भी काम करते हुए सचिन देव बर्मन ने अपने संगीत सृजन की यादगार मणियों का योगदान दिया। ये फिल्में हैं देवदास, सुजाता और बंदिनी।

कालांतर में सचिन देव बर्मन ने बरस दर बरस देव आनंद अभिनीत कुछ और फिल्मों के लिए तैयार किया अपना मधुर संगीत। ये फिल्में हैं बंबई का बाबू, तेरे घर के सामने, तीन देवियां, ज्वेल थीफ,

सन 1969 में आई सचिन देव बर्मन के संगीत से सजी फिल्म आराधना। इसी फिल्म से उदय हुआ राजेश खन्ना के रूप में भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार का।

1970 के बाद के दौर में भी सचिन देव बर्मन के सुरीले संगीत से सजी कई फिल्में आईं। इन फिल्मों के नाम हैं तेरे मेरे सपने, शर्मिली,

0: मेरा मन।
1: प्रेम नगर, सगीना, चुपके चुपके, सजा, नौजवान, बाजी, हाउस नंबर 44, 16 साल, लाजवंती, चलती का नाम गाड़ी, बात एक रात की, डॉक्टर विद्या, जिद्दी, इश्क पर जोर नहीं, नया जमाना और गैम्बलर। 31 अक्टूबर सन 1975 को मुंबई में सुरों के इस साधक ने अपनी अंतिम सांस ली।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन पर। आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे की

0: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हमारे बीच हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं जिनकी रचनाओं में कहानी सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि दृश्य की तरह हमारे सामने घटित होती है। मनोज रूपड़ा समकालीन हिंदी साहित्य के चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की सादगी है और साथ साथ गहरी संवेदना, सामाजिक यथार्थ और दृश्यात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। आखिरी सीन जैसी कहानी और प्रतिसंसार जैसे उपन्यास में उनका सिनेमाई लेखन पाठक को शब्दों के माध्यम से दृश्य देखने का अनुभव कराता है। उनकी रचनात्मक दुनिया में इंसान, समाज और उसके भीतर चलने वाले द्वंद बहुत सहज लेकिन प्रभावशाली ढंग से सामने आते हैं। आज हमें उनसे उनके लेखन, उनकी रचनात्मक दृष्टि और साहित्य में उनके प्रयोगों पर बातचीत करने का अवसर मिला है। मनोज जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार। और विविध भारती के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: आपकी कहानियों में कहीं रेडियो आता है, बड़े वॉल्व वाला रेडियो
1: जी, जी।
0: और कहीं पर संगीत आता है, तो संगीत की बातें तो हम करेंगे बाद में, लेकिन हम रेडियो की बात जानना चाहते हैं कि रेडियो से कैसा लगाव है। और एक जो आपकी कहानी है टावर ऑफ साइलेंस, इसमें कहीं रेडियो भी है और साथ में मुंबई भी है
1: जी।
0: और मुंबई में है आप और रेडियो स्टेशन पर बैठे हैं, तो ये अपने एहसास साझा कीजिए
1: जी। मुझे याद आ रहा है एक इलाका है मुंबई का जहाँ पुराने रेडियो के अब भी, मतलब अब तो शायद ना हो, उसको सुधारने वाले उसके मैकेनिक होते थे। तो उस दुकान में मैं पहुंच गया, वहाँ बहुत बड़े बड़े रेडियो थे वॉल वाले और इतने खूबसूरत उसके कैबिनेट, तो देखकर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उसमें से एक दो रेडियो खरीद लूँ।
0: क्या बात है।
1: लेकिन उसने कहा कि आप लाख रुपया देंगे तो भी ये रेडियो आपको नहीं मिलेगा।
0: अरे
1: जबकि वो सब बंद पड़े हुए रेडियो थे
0: जी जी।
1: लेकिन उन

0: के जो मालिक थे
1: जी,
0: वो इतने बड़े रेडियो प्रेमी थे कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से फिर से रेडियो में आवाज आनी शुरू हो जाए।
1: अच्छा।
0: वो क्योंकि वो वॉल वाले रेडियो थे और वो बढ़ने बंद हो चुके थे, तो उनकी ये कोशिश थी कि कहीं से भी वॉल लेकर आओ, तब तक ये रेडियो तुम्हारे यहाँ पड़े रहेगा। तो इतने पुराने मतलब प्रेमी थे रेडियो के लोग, और मैं तो बहुत पुराना प्रेमी हूँ रेडियो का, विविध भारती वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, बीबीसी लंदन सुनता था, और सिर्फ गीत संगीत ही नहीं सुनता था, दूसरे जो कार्यक्रम आते थे महत्वपूर्ण रेडियो के, रेडियो नाटक का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपकी जो एक धारावाहिक चल रही है
1: गीतों
0: भरी कहानी, उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियो आर्टिस्ट की आवाज शुरू से बहुत पसंद रही
1: है। क्या बात है
0: जी।
1: और आपकी प्रतिक्रिया भी मिलती रहती है कहानियों पर, खासतौर से गीतों भरी कहानी पर। तो रेडियो से आपका प्रेम पहले से ही आपने बताया है, हम लिखने के बारे में जानना चाहते हैं, ये लिखने का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की?
0: शुरुआत इस तरह से हुई कि 17 साल की उम्र का जब मैं था
1: जी,
0: तो एक मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया था, 7 दिन का वो वर्कशॉप था, और रायपुर आकाशवाणी के निदेशक उस समय थे मिर्जा मसूद
1: जी, जी।
0: वो उस ड्रामा प्रशिक्षण केंद्र जो था उसके वो प्रशिक्षक थे, तो मिर्जा मसूद से मैं पहले से प्रभावित था उनकी आवाज से, और उनके और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे वो, कई अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए थे। तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया, वहां कुछ लोग ऐसे मिले जो पढ़ने लिखने वाले थे, कला की दूसरी विधाओं से जुड़े हुए थे, उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे वहां जो उसके निर्देशक थे, क्षितिज रंग शिविर नाम था उस संस्था का, उसके जो निर्देशक थे वो राम तिवारी। उनको जब मालूम पड़ा कि मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी है और मेरी पढ़ाई लिखाई उस तरह से औपचारिक है नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम ठीक है स्कूल छोड़ गई कोई बात नहीं
1: जी।
0: स्कूल से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है
1: जी, जी।
0: लेकिन स्कूल के बाहर ज्ञान की बहुत बड़ी दुनिया है।
1: क्या बात है।
0: तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का सदस्य बनाया।
1: अच्छा।
0: और वो ये कहते थे कि तुम अखबार रोज पढ़ो और अखबार में संपादकीय को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए खबरों के अलावा।
1: जी, जी, जी।
0: फिर वो बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे ला कर देते थे और उस तरह से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी। फिर जब वो एक संपादक के नाम पत्र नाम का एक कॉलम आता था देशबंधु नाम के अखबार में, एक बार मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी, एक बिल्कुल सामान्य जो पाठक होता है अखबार का उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किसी मोहल्ले की किसी समस्या पर एक छोटी सी मेरी चिट्ठी थी और थोड़ी लंबी हो गई थी
1: जी, जी।
0: आप लोग सब जानते हैं मैं लंबी कहानी का लेखक हूँ, वो चिट्ठी भी लंबी हो गई थी। वो चिट्ठी तिवारी जी ने पढ़ी तो बोले यार जो तुमने जो लिखा है उसमें कहानी है, यानी वो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक चिट्ठी नहीं है, तुम्हारा लिखने का जो ढंग है उससे ऐसा लगता है कि तुम कहानी लिख सकते हो।
1: अच्छा।
0: तो पहली बार ये कोई प्रेरित करने वाला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम कहानी लिख सकते हो। फिर मैंने कोशिश की लिखने की कहानी, और पहले बहुत कहानियां पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ अलग हिट लिखना है। तो दफन कहानी जो लिखी मैंने वो 3 साल में लिखी।
1: 3 साल में
0: और मैं ये चाहता था कि पहली कहानी जो आए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए।
1: क्या बात है।
0: और उसमें बहुत मैंने मेहनत की, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं जा करके लोगों से मिलता था। उसमें कब्रिस्तान का दृश्य है, तो कब्रिस्तान में क्या होता है, उसमें जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है,
1: क्या बात है,
0: ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं कब्रिस्तान जाता था और वहाँ के जो नमाज पढ़ाते जो थे उनसे मिल करके फिर मैंने उनसे लिखित रूप में लिया, ये इस समय ऐसा पढ़ा जाता है, इस समय ये कलमा पढ़ा जाता है, उस तरह से वो कहानी बनी। शुरुआत इस तरह से हुई।
1: इतनी रिसर्च करनी चाहिए।
0: मैं रिसर्च उस तरह से देखो मैं मतलब पढ़ करके किताबें पढ़ करके या इंटरनेट से या इस तरह से चीजों से रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं मौके पर जाता हूँ और वहाँ भले मैं किसी रिपोर्टर की तरह नोट ना लूं लेकिन उस माहौल में जा करके गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: उससे वो पूरा माहौल जो ना आपके भीतर अपना एक रास्ता बनाता है।
1: और वो आपकी ये दृश्यात्मक बातें आपकी कहानी में नजर आती हैं और ये प्रेरणा की बात है हम नए लेखकों के लिए जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, लेखन की दुनिया में आ रही है, तो उन्हें ये बात हमें लगता है नोट करने लायक है कि अगर आपको कहानी लिखनी है किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर, तो उसमें डूबना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। मैं भी समृद्ध हुई इस बात से, तो अगली कहानी में मैं ये ध्यान रखूंगी। और ये बातें नजर आती हैं आपकी कहानियों में। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी कहानी है आपकी जो बहुत चर्चित है और बहुत डीप में लिखी हुई, तो इसमें जो एक कैरेक्टर है टेम्पटन दस्तूर, ये

0: यार, एक घर था, उसमें दो बूढ़े लगभग 85 के आसपास की उम्र के और एक बूढ़ी महिला, उसकी भी लगभग 90 के आसपास की उम्र, और
1: जी
0: तीनों सगे भाई बहन थे, तीनों ने शादी नहीं की थी और एक ही घर में रहते थे तीनों। ये मुझे थोड़ा सा अलग तरह का वो लगा कि कैसे, मतलब ये रहते होंगे भाई बहन एक साथ बिना विवाह किए इतने सालों से। तो मैं हर बार जाता था, उस परिवार की कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करता था। तो टेमटन दस्तूर जो था वो उसके भाई का बेटा था।
1: अच्छा।
0: और वो उस तरह से कहानी में तो चीजें बदलती भी है। फिर अब सिर्फ करेक्टर का सवाल नहीं होता, कहानी में लोकल का भी बहुत महत्व होता है।
1: बिल्कुल।
0: वो पूरा जो लोकल है, जिसको हम बॉम्बे का जो लैंडस्केप बोलते हैं, वो इलाका वही है। और वो पत्थर की इमारतों का जो पूरा इलाका है, उसमें मुझे हर जगह एक कहानी छुपी हुई दिखती है। क्योंकि सब इमारतें 100-150 साल पुरानी हैं।
1: जी।
0: तो कितनी पीढ़ियां उन इमारतों में से गुजरी होगी और कितनी कहानियां उसमें बनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक लोकल था। और फिर मुंबई से मेरा नागपुर जाना हुआ, तो नागपुर में इम्प्रेस मिल थी। उस इम्प्रेस मिल को मैंने अपने सामने डिमोलिश होते हुए देखा। तो 125 साल पुरानी जो चिमनी थी इम्प्रेस मिल की, कुछ लोग चाहते थे कि उसको हेरिटेज के रूप में रखा जाए, क्योंकि टाटा की ये मदर कंसर्न थी इम्प्रेस मिल, और उस इलाके की भी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी। उस मिल के कारण बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में आया। तो लोग चाहते थे कि उस चिमनी को एक हेरिटेज के रूप में रखा है, लेकिन ये संभव नहीं होता। जब वो चिमनी गिराई गई, तब पहला बीज मेरी कहानी में आया। तो मैंने मतलब फिर दोनों को रिलेट किया, लोकल को, एक यहाँ का इम्प्रेस मिल का लोकल था और एक बॉम्बे का ये वाला लोकल था, फिर उसके जो करेक्टर है। तो फिर चीजें मिलती गई और कहानी आगे बढ़ती गई उसी तरह से।
1: जी। तो वैसे भी आपकी कहानियों में शब्दों के साथ साथ हम आंखों से कहानी को देखते चलते हैं, ये आपकी खासियत है। और एक तो लंबी कहानी लिखने की, जो आपने खुद भी कहा कि लंबी कहानी लिखते हैं, तो क्या ये सायास लिखते हैं लंबी कहानी, या अपने आप लिख जाती है?
0: कहानी लिखते समय कभी भी ना ये नहीं सोचता मैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और बहुत कोई निर्धारित और निश्चित अंत मेरे दिमाग में नहीं होता।
1: बिल्कुल। टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, द्वंद्व के बारे में सोचते हैं, या वो भी लिखा
0: नहीं उस तरह से, मतलब किसी एक पहलू पर नहीं सोचता मैं। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरे कहानी के जो किरदार है वो खुद अपनी बात कहे, मैं उन पर अपने विचार न ला दूं।
1: बिल्कुल।
0: या एक लेखक कहीं उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये लेखक अपनी बात कह रहा है।
1: जी जी।
0: तो किरदारों को मैं अपनी तरह से खेलने का पूरा मौका देता हूँ, और मेरी इस छूट के कारण वो कहानी लंबी हो जाती कई बार।
1: जी जी। और वो पात्र बोलते हैं, संवाद करते हैं पाठकों से, और पाठक के दिल में कहीं पैठ बना लेते हैं। अब हमें लगता है संगीत आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, संगीत का दामन थाम लेते हैं जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर हम कौन सा गाना आपकी पसंद का सुनवाएं अपने श्रोताओं?
0: पहली मतलब जो मेरी पसंद है, एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें सेक्सोफोन की आवाज है। उस गाने का नाम है जिंदगी कैसी है पहली।
1: जी।
0: और उसमें आप ध्यान दीजिए कि सेक्सोफोन कितनी खूबसूरती से बजा है।
1: जी। तो सुनते हैं ये गाना।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: मनोज जी ने अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी वाद्यों के बहुत शौकीन हैं, संगीत के बहुत शौकीन हैं जहां तक हमें जानकारी है, और इस गाने में सैक्सोफोन का खूबसूरत प्रयोग हुआ है। आपकी संगीतिक कथा त्रयी है, तीन कहानियों का एक संग्रह है अनुभूति जिसमें तीन कहानियां साज नासाज और आमाजगा और अनुभूति।
2: वैक्यूम एवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: था तो मैंने अपना घूमना कैंसिल कर दिया, दोस्तों को अपने रास्ते पर भेज दिया, और मैं इस ड्रामा फेस्टिवल में नियमित रूप से नाटक देखता रहा। एक शाम जब शो खत्म हुआ तो मैं समुद्र किनारे गया, एक रॉक बीच था वो पथरीला, उस पर एक बैठा हुआ था बीटनिक कलाकार, लगभग 55 के आसपास की उम्र होगी, लंबे बाल, सफेद बाल, और वो सैक्सोफोन बजा रहा था डूबते हुए सूरज को देखते हुए। समुद्र का किनारा है, डूबता हुआ सूरज और सैक्सोफोन की आवाज, इतना प्रभाव उसका मुझ पर पड़ा। एक तो वो पूरी दृश्यात्मक था, यानी वो सिर्फ उसके बजाने का असर नहीं था, वो जिस तरह से समुद्र को या सूर्य को संबोधित होकर के बजा रहा था,
1: क्या बात है।
6: तो प्रकृति, संगीत और ये सब चीजों का जो मिला जुला प्रभाव था वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया। सैक्सोफोन को लाइव पहली बार मैंने उस तरह से सुना, फिर कई सालों तक तो वो मेरे दिमाग में था कि ये सैक्सोफोन है, इसके ऊपर कुछ करूंगा। बंबई आना हुआ उसके बाद मेरा, लगभग 10 सालों के बाद
1: जी।
6: बंबई में घाटकोपर में मेरी नमकीन की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के बाजू में एक चौल थी, वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते थे, साज बजाने वाले, जो फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर एक विली भाई हमारे परिचित, हमारे सेल्समैन थे परेल में, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो साज बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे सब, और ये सब फिल्मों में बजाते थे। तो ये मालूम हुआ कि घाटकोपर के चौल में जो रहते थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे, और ढोलक, शहनाई, तबला, इस तरह के वाद्य बजाते थे, और बरेल में जितने रहते थे वो सारे गोवा से आए हुए थे
1: जी जी।
6: और ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो बजाए फिल्मों में उसके बजाने वाले हैं वो लगभग गोवा से आए हुए सब। तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सिंथेसाइजर आने के बाद और नई जो टेक्निक आई संगीत में, उसके कारण बहुत सारे इस तरह के साजिंदों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया कि अब उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आजीविका में बड़ा फर्क आ गया। तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि एक कोई सैक्सोफोन बजाने वाला है और उसने कई माइलस्टोन पीसेस दिए हैं कई फिल्मी गानों में, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं है। हालांकि मैं वैसा कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को किसी भी, हम संगीत निर्देशक को जानते हैं कि किस फिल्म में किसने संगीत दिया, लेकिन उसमें कोई खास धुन किस कलाकार ने बजाई
1: है नहीं बताया जाता,
6: ये हमको नहीं मालूम होता है हमेशा। तो एक तो उसको कभी भी उस तरह से मतलब सार्वजनिक कोई पहचान उसको नहीं मिली, और दूसरा उसका रोजगार भी चला गया। तो उस दर्द को मुझे लगता था कि केंद्र में लेना चाहिए कहानी में, तो वो एक सिलसिला बना फिर साज नसाज का।
1: और फिर उसके बाद सारंगी के मद्देनजर आपने आमाजगाह लिखी
6: जी,
1: जिसमें
6: जी,
1: सारंगी का खूबसूरत प्रयोग है। तो कोई सारंगी वादक भी आपको मिला था ऐसे?
6: सारंगी वादक वैसे नहीं मिला, लेकिन सारंगी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था
1: जी,
6: और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारंगी और सैक्सोफोन ये दोनों बड़े बदनसीब साज थे
1: जी।
6: वो इस लिहाज से कि सैक्सोफोन को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा था उसमें बहुत सालों तक कोई जगह नहीं मिली। सैक्सोफोन जो नाइट क्लब होते थे वहां बजता था, बाद में धीरे धीरे और लोग भी बजाने लग गए, फिर बाद में वो ऑर्केस्ट्रा

0: में भी आया, ठीक वैसे ही सारंगी भी,
1: सारंगी भी और दुख में,
0: और उसको भी शास्त्रीय संगीत के विधिवत मंच में आने में सारंगी को भी बहुत समय लगा। तो ये दोनों साज की भी अपनी एक मार्मिक कहानी है, उसके बजाने वाले की तो हो गई अलग कहानी, लेकिन ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी अपनी एक बड़ी मार्मिक कहानी है।
1: बिल्कुल।
0: तो सारंगी का जब मैं ऐसा पढ़ रहा था कि इसका मतलब ये कहां से आया, अच्छा उसकी आवाज इतनी सुरीली है, वो इतनी खींचने वाली आवाज है, सैक्सोफोन की भी और सारंगी की भी, फिर ये ख्याल आया। और दूसरा जो उस कहानी का जो बीज जो पड़ा, कुमार गंधर
1: जी, पंडित कुमार गंधर,
0: हाँ हाँ, उनके जो पुत्र हैं मुकुल शिव पुत्र, तो जैसा मैंने लोगों से सुना जो उसके बारे में खबर आई, तो उनके उस पीरियड में, उस फेज में वो किस तरह की परिस्थिति में थे, उसको देख करके मुझे लगा कि मैं अपने कहानी का जो नायक है उसको उस तरह से ले सकता हूँ। बल्कि सिर्फ आवाज का ही नहीं, इसका जो सितार वादक है अनुभूति का, वो भी लगभग एक तरह के मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाता है। तो एक कलाकार के जीवन में जब कहीं बड़ा अवसाद आता है, कहीं बड़ी जब उदासी आती है, और कई बार जब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर उसको घेर लेती है, तो उसका मानसिक संसार कैसा होता है, ये मेरे जहन में था, और इसी वजह से ये दोनों कहानी की रचना हुई
1: और बहुत चर्चित हुई। और ये अनुभूति कथा संग्रह में तीनों कहानियां शामिल हैं। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि इन तीनों कहानियों में वाद्य यंत्र और कथा के बीच आपने रिश्ता कैसे स्थापित किया, क्योंकि पात्रों के साथ कहानीकार का भी एक नाता जुड़ जाता है।
0: तो असल में देखो, जो वाद्य बजाने वाला कोई भी जो शख्स है, उसका जो भी जीवन हो तो मानवीय जीवन है, और उसके भी अपने रिश्ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है, तो वो जीवन का उसका उतार चढ़ाव और उसके रिश्ते, अच्छा दिक्कत एक ये आती है एक सामान्य आदमी में और एक कलाकार के जीवन में, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेयर होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मुझे तो लगता है कि वो राइटर से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ले आती है जो मेरे नजर में तो एक कहानी है
1: जी,
0: है ना, उनके जीवन के उस तरह के जो उतार चढ़ाव है, उसके जो मोड़ है, वो कहानी वहीं से बनती है
1: जी।
0: तो मैं उनके संगीत और उनके जीवन दोनों को मिला करके कहानी बनाता हूँ
1: जी, और एक उम्दा कहानी बनती है। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक लिटरेचर प्राइज की टीम ने एक फिल्म बनाई थी आपके उपन्यास पर, जिसे जेसीबी शॉर्ट में कहते हैं, वो काले अध्याय पर, काले अध्याय का जब अनुवाद आया था
0: जी जी,
1: तो ये कहानी है कैसे किसी के मन में,
0: डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी असल में, जो भी लेखक शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
1: शॉर्ट फिल्म थी, कोई
0: शॉर्ट फिल्म थी उस लेखक के जीवन परिचय
1: जी जी।
0: तो वो हम पांचों लेखकों के ऊपर बनी थी, जो पांच लेखक उस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे
1: जी,
0: तो वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसके, और जब किसी को अवार्ड मिलता है तो फंक्शन के दिन उसको दिखाया जाता है
1: जी जी। तो वो फंक्शन के दिन दिखाने के
0: नहीं,
1: लिए
0: मैं, मुझे अवार्ड नहीं मिला था
1: हाँ,
0: जिनका,
1: पर आपकी हाँ, किताब शामिल थी उस,
0: हाँ किताब शामिल थी मेरी
1: जी, तो उस पर एक फिल्म बनाई गई थी और हाँ, लोगों तक पहुंची, हमने भी देखी वो फिल्म
0: हाँ, हाँ,
1: बेहतरीन
0: हाँ, वो असल में जैसे भी हाँ, एक विज्ञापन फिल्म थी
1: हाँ,
0: वो अपने चुने हुए लेखक का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, उनकी एक टीम है और अपने चुने हुए लेखक को, जो क्योंकि उनको लगता है कि विनर चाहे कोई भी हो, जो पांच लेखक शॉर्ट लिस्ट में आए उनके लिए वो सब समान
1: जी, बिल्कुल सही बात है। बात फिल्मों की चली है तो यहाँ पर एक फिल्मी गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का।
0: बहुत प्यारी वायलिन की धुन है उसमें, उस गाने में एक प्यार का नगमा है,
1: मौजों की रवानी
0: है,
1: शोर फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना
0: जी।

0: अब बात फिल्मों की चली है और गाना ये सुनवाया शोर फिल्म का गाना। फिल्मों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बातचीत में आप अक्सर फिल्मों का जिक्र करते हैं और कई बार तो ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जो सुनी भी नहीं है और आपने देखी होती है उसके बाकायदा किरदार का जिक्र करते हैं। हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा का जिक्र करते हैं और ये कहा जाता है कि मनोज रोपड़ा बड़े विलक्षण कथाकार के साथ साथ फिल्मों के मर्मज्ञ हैं, तो बताइए इस शौक के बारे में।
1: मैं अपने आप को जो ना फिल्म का मर्मज्ञ या विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं फिल्म का समीक्षक भी नहीं हूँ,
0: लोग मानते हैं,
1: मैं अपने आप को फिल्म का एक जागरूक दर्शक मानता हूँ
0: जी।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखना भी एक कला है।
0: सही बात है।
1: और ये मुझे कब लगा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ा था मैं और एक बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा से एक कार्यक्रम करवाया जाए, तो हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां तो होती थी, मैंने फिल्म पर वो कार्यक्रम रखा और उसमें पूना से सतीश बहादुर साहब को बुलाया। तो सतीश बहादुर साहब बहुत सीनियर मतलब टीचर रहे हैं
0: जी।
1: बहुत सारे जो हमारे आज के दौर के जाने पहचाने जो निर्देशक हैं, प्रकाश झा हैं या और भी, उनके सबके वो शिक्षक रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी उनको और उन्होंने जवाब दिया कि कोई दंग है चिट्ठी लिखने का।
0: अरे
1: तो मुझे लगा कि कहीं से भी आपने कोई पेज फाड़ लिया और लिख दिया, पहले सिस्टमेटिक तरीके से चिट्ठी लिखना सीखो।
0: अच्छा।
1: तो मैंने जो चिट्ठी लिखी क्या प्रभाव पड़ा होगा पता नहीं।
0: हाँ।
1: लेकिन मुझे ना वो जानते थे और ना एक छोटा सा शहर दुर्ग, कैसे वो आ जाते, लेकिन वो आए। उन्होंने दो दिन में अपने साथ वो बहुत सारे स्लाइड्स लेकर आए थे, बहुत सारे छोटी छोटी क्लिप्स फिल्मों की लेकर आए थे और स्क्रीन पर छोटी छोटी फिल्में दिखाकर उन्होंने समझाया कि फिल्म का ग्रामर क्या होता है, उसको कैसे देखा जा सकता है। और उसके बाद बहुत इच्छा मेरी बढ़ गई, मुझे मालूम पड़ा कि पूना में एक कोर्स होता है फिल्म एप्रिसिएशन का, वो एक महीने का कोर्स होता है और उसके लिए कोई बड़ी औपचारिक जरूरत नहीं होती, कोई भी कर सकता है। तो मैं बड़े उत्साह में चला गया वहाँ और वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है।
0: अच्छा।
1: तो वहां से फॉर्म भरने जब गया था तो उन्होंने मुझे लौटा दिया। फिर मैं फिर सतीश जी के कमरे में गया।
0: हाँ।
1: मैंने कहा मेरा तो नहीं हो पाएगा इसमें, क्यों? तो मैंने कहा इसमें तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो क्या दिक्कत तुम? मैं बोला मैंने तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
0: हाँ।
1: तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो मैंने कहा कि मैं छठवीं फेल हुआ, वो मेरा चेहरा देखते रह गए, तुम इतनी फिल्मों में इतनी रुचि रखते हो और तुम्हारी कुछ उस तरह की कोई फॉर्मूला एजुकेशन भी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन कुछ कोशिश कीजिए, मेरे लिए कुछ हो सकता है। तो देखो एक काम हो सकता है, पटना में प्रकाश झा 7 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं सिनेमा पर, तुम उसमें आ जाओ। तो मैं वहाँ गया, प्रकाश जी ने चिट्ठी लिखी थी मुझे बुला, उन्होंने कहा होगा, और 7 दिन उनके साथ रहा। उस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से सिनेमा को समझाया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि शॉट किस तरह से लिए जाते हैं, कोई अगर मीडियम शॉट है तो उसका क्या अर्थ है, कोई एक्सट्रीम क्लोज है तो उसका क्या अर्थ है, कट आ रहा है तो क्या अर्थ है। तो ये शॉट लेने के जो तरीके होते हैं उसमें कहानी होती है। और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर सिनेमा देखना मैंने अलग ढंग से सीखा। अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती तो सचित रे की जो एक फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, चारुलता।
0: अच्छा।
1: चारुलता फिल्म के जो 7 मिनट है उसमें एक भी संवाद नहीं है, 7 मिनट तक फिल्म यूं ही चल रही है बिना संवाद के, और कैमरे का मूवमेंट जो है ना उसको देख करके आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि पात्र जो कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
0: जी जी।
1: यानी इतना खूबसूरत एक एक शॉट है कि बिना संवाद के भी हर स्थिति आपको बताते कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, बल्कि भीतरी जो मनस्थिति है चारुलता की वो भी बिना संवाद के मालूम पड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरती है फिल्म की।
0: आपको फिर वहाँ एडमिशन मिला कि नहीं?
1: नहीं मिला,
0: नहीं मिला।
1: उसके बाद वही पटना जाना पड़ा, पटना में 7 दिन उनके साथ रहा।
0: यहाँ पर मेरे जहन में तो सवालों की आंधी चल रही है, तो मैं क्रम से आपसे पूछती जा रही हूँ कि आपने बताया कि आपने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, पर आपकी कहानियाँ और उपन्यास पढ़ते हुए तो लगता है कि एक बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बौद्धिक इंसान, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई किया हुआ, अध्ययनशील। तो ये क्या कहानी है कि आपने कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ी और क्यों नहीं पढ़ी?
1: नहीं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि गणित में फेल हो गया था और मुझे लगा कि गणित में कभी
0: पास नहीं हो सकते,
1: पास नहीं हो पाऊंगा।
0: ओके।
1: अच्छा, दूसरे सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे
0: जी,
1: गणित में नंबर नहीं आते थे। और मैंने टीचर से कहा, एक साखर दांडे नाम की मैडम थी, तो मैंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे छोड़ दोगे तुम? तो बोले फिर गणित हटा दो गणित अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ सकता हूँ
0: जी।
1: तो घर में ऐसा मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं था कि
0: प्रेशर नहीं डाला माता पिता ने?
1: हाँ हाँ, हम लोग का परिवार जो है ना व्यावसायिक परिवार है, और अगर लड़के को मिठाई बनाना आता है
0: बस
1: तो बस बहुत हो गया।
0: हाँ।
1: उसको किसी तरह की अपने आजीविका के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
0: अच्छा,
1: अच्छा मेरी जितनी दिलचस्पी कहानी लिखने में लगभग उतनी दिलचस्पी मिठाइयां बनाने में भी, और बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में मिठाई का अच्छा कारीगर बन चुका था।
0: अच्छा तो फिर मिठाई बनाना तो खैर आपने सीख लिया, और जाहिर सी बात है कि मिठाई बनाते होंगे तो आपका परिवार खुश रहता होगा, खासतौर से आपकी पत्नी तो मिठाई खाकर तो बहुत खुश होती होंगी। तो जरा बात चलिए तो उनका भी जिक्र कीजिए।
1: नहीं, वो भी उसी परिवार से है, मतलब उनका भी जो व्यवसाय था उनके पिताजी का भी, वो भी मिठाई का ही था, और उनके पिताजी ने भी यही देखा कि इसको कितने तरह की मिठाइयां बनानी, उसने पूछा ही नहीं, जबकि मेरी पत्नी अंग्रेजी में है और मैं छठवीं फेल हूँ, तो पूछा भी नहीं कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक है।
0: अच्छा।
1: सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इसको मिठाइयां कितनी बनानी आती है।
0: तो आप पास हो गए मिठाई बनाने में,
1: उसके मतलब कारण पास हो गया।
0: नीता जी जो आपकी पत्नी, उन्होंने पास किया कि नहीं?
1: बिल्कुल पास किया होगा।
0: तो मतलब आप उनके लिए मिठाई बनाते हैं घर पर?
1: मैं हर राखी के दिनों में एक मिठाई बनाता हूँ, मोहन थाल, गुजरात की बहुत स्पेशल मिठाई है
0: जी।
1: वो मिठाई मेरे हाथ की बनी हुई सबको बहुत पसंद है
0: जी। क्या बात है।
1: हाँ, सबको बहुत पसंद है, तो वो बहुत जिद करती है। नीता के 4-5 भाई हैं और मेरी भी 4-5 बहनें हैं, तो फिर वो इतनी बनती है कि सबको एक एक बॉक्स मिठाई हर के घर में पहुंच जाती है।
0: क्या बात है, ये बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बातें चल रही हैं। और बात मिठाई की चली, मिठास तो संगीत भी घोलता है, तो यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए मिठासा, कोई गाना बताइए।
1: बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा गाना है, और पियानो बहुत खूबसूरती

0: थोड़ी देर पहले बात चल रही थी फिल्मों की, कि आपकी फिल्मों में कितनी गहरी दिलचस्पी है और गहरा दखल भी है, मतलब फिल्मों की इतनी सारी जानकारी आपके पास है। आपकी कहानी है आखिरी सीन
1: जी।
0: और एक उपन्यास भी है प्रति संसार। तो ये क्या इस सिनेमाई भाषा का प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि उसमें शाब्दिक दृश्य उपस्थित किए गए, तो इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: एक मतलब ये ख्याल आया एक बार कि कैमरा चल रहा है
0: जी,
1: और जो दृश्य दिख रहे हैं और कैमरे की आंख से मैं अपनी कहानी लिखूं, तो पहले मैंने प्रति संसार लिखा था और उसमें शुरुआत ही कैमरे से है कि दृश्य के ऊपर केंद्रित है और जो घटित हो रहा है उसका मैं शाब्दिक वर्णन कर रहा हूं। तो उस पूरी फिल्म में ज्यादातर विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स और शब्द दोनों एक चीज तो है नहीं। तो मैंने प्रयोग किया था कि मैं दृश्यों को शब्दों में किस तरह से दिखा सकता हूँ। वो प्रयोग बहुत सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये जो कहानी है आखिरी सीन, इसका जो कथानक है वो मेरे जहन में काफी सालों से था। मैं अक्सर ये सोचता था कि जहां कहीं कोई बड़ी लड़ाई होती है, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है, दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं।
0: जी जी
1: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता
0: जी,
1: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर एक दो और भी फिल्में देखी हैं, और बल्कि एक तो विशेषांक निकला था ज्ञानोदय का
0: जी,
1: उसमें सारी कहानियां ही वही थी जिसमें सीमावर्ती इलाके के आसपास का लोकेशन था। बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में असल में बहुत अलग तरह का जीवन होता है। बॉर्डर में जीने वाले लोग कितने कसम में जीते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उस पर कई कहानियां हैं और उस पर एक लीलाधर मंडलोई साहब जब ज्ञानोदय में थे तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला था और मैंने एक लेख भी लिखा था उसमें। मैंने अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में बनी हैं, तो ये मेरे जहन में था, लेकिन वो कथानक उसको फॉर्म नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप कहानी का आपका कंटेंट तो दिमाग में आ गया
0: है,
1: लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो रूप कभी कभी नहीं मिलता, कंटेंट मिल जाता है। अब वो 2-3 साल तक लगातार चलती रही कसमकस का। मैं पहले एक बार ये प्रति संसार वाला काम कर चुका था तो अपने फॉर्म को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरी सीन में फिर मुझे लगा कि उस

0: फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता। तो उस कहानी को भी मैंने सिनेमेटिक भाषा में लिखा है कि जो घटनाएं हो रही है उसमें मैंने फिर ये चरित्र जो रखा वो फिल्म निर्देशक का रखा कि एक निर्देशक है वो एक फिल्म बनाना चाह रहा है
1: जी जी,
0: और उसका व्यक्तिगत जीवन में इतनी परेशानी आ गई कि अब उसका स्टूडियो भी खत्म हो गया, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया और वो फिल्म बना नहीं पा रहा है। तो वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है और जो फिल्म इस कहानी में मैंने वर्णन किया उसको कल्पना में बनाता है। यानी वो उसके पास अब कैमरा भी नहीं है, उसके पास अब टीम भी नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है। अब वो खोए रहता है ख्यालों में और उस ख्याल में वो फिल्म बना रहा है। ये उस कहानी का मैंने फॉर्म तय किया था।
1: कितनी सूक्ष्म संवेदना है इसमें, इस कहानी में। तो क्या ये जो सिनेमाई लेखन जो शिल्प होता है, तो इस शिल्प के लिए क्या अलग से आपको कोशिश करनी पड़ी या स्वतः लिखता चला गया एक नदी की धारा की तरह?
0: वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की भी अपनी एक भीतरी मांग होती है
1: जी।
0: हर बार हम कहानी के दृश्य नहीं खड़े करते, कभी वही कहानी भी अपने रंग से अपने दृश्य खड़ी करते हैं। जैसे आपकी खुद की एक कहानी है, मराठी में शीर्षक है उसका,
1: तुझी में वाट पाते।
0: हाँ हाँ, अब उस कहानी में समुद्र किनारे के रेतीले दशाओं में कार फंस गई है
1: जी।
0: अब वो कार जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही है उतनी धसते जा रही है
1: जी।
0: और उस कार में जो युगल बैठा हुआ है उसको एक बूढ़ी महिला देख रही है जो उसका अतीत है
1: जी जी।
0: तो वो जो सीन है ना वो आपने नहीं लिखा है,
1: उस किरदार ने लिखा है,
0: वो कहानी ने खुद क्रिएट किया है। जब कहानी खुद कोई सीन क्रिएट करती है तो लेखक का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको बिगाड़े ना।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लेखक बिगाड़ देता है दृश्यों को, जब सहज रूप से कोई चीज आती होती है उसको सहजता के साथ लिखने के बजाय अपनी बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाला लेखक होता है वो अच्छी कहानी नहीं लिख पाता।
1: बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा भाषाई खेल करने लगते हैं शिल्प को खूबसूरती से सजाने की कोशिश में बिगड़।
0: सहजता से कुछ चीजों को अपने भीतर आने देना चाहिए, जिसको हम मोटे शब्दों में कहे कि आत्मसात करना।
1: यहाँ पर आपका शुक्रिया भी हम अदा कर दें कि आपने इतने ध्यान से कहानी को पढ़ी और इसका जिक्र किया। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: एक बहारों मेरा जीवन भी सवारों, उसमें बांसुरी और सितार का काम बहुत खूबसूरत है।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: बात बांसुरी और सितार की आपने की, तो क्या इस पर, सितार पर तो एक कहानी है अनुभूति
1: जी,
0: बांसुरी पर भी कोई कहानी लिखी?
1: अब आ रही है,
0: आ रही है।
1: अब वो कहानी नहीं है, वो अब उपन्यास है।
0: हाँ।
1: और लगभग आधा लिखा जा चुका है
0: जी।
1: और मेरी आदत है हमेशा कि मैं लिखने से पहले कई बार बताता हूँ लोगों से, यानी लिखा नहीं है। जैसे आमाज का कहानी जो थी, वो लिखने से पहले मैंने अपने एक दोस्त है बसंत त्रिपाठी, दोस्तों के साथ बैठा था, बसंत के साथ
0: जी।
1: और मैंने वो पूरी कहानी उसको सुनाई, जबकि उसका एक शब्द भी मैंने नहीं लिखा था। ये जो कहानी है बांसुरी की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरा अभी मतलब अभी लिखा नहीं है मैंने। एक बच्चा है जो माँ से बिछड़ गया है
0: जी।
1: और वो लोकल मतलब किसी ट्रेन में बैठ के मुंबई पहुंच गया है।
0: ओहो।
1: और वो मुंबई में लावारिस है और इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। उसमें एक अपाहिज बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा करके भीख मांगता है, उसके साथ उस बच्चे की थोड़ी अच्छी तालमेल हो जाती है। वो उसके साथ घूमता फिरता है, उसके साथ रहता है। मंदिर के सामने कभी बांसुरी बजाता था, कभी चौपाटी में जाकर के बांसुरी बजाता था। तो उसके साथ रहते हुए ये भी बांसुरी बजाना सीख गया। और कुदरती उसके अंदर कोई गुण था बांसुरी बजाने का, वो जब भी बांसुरी बजाता था तो आसपास चलते हुए लोग ठिठक के रुक जाते थे
0: जी।
1: तो ये किरदार अभी मेरे जहन में है,
0: लिखना बाकी है।
1: लिखना बाकी है जी।
0: तो इस उपन्यास का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जो आपने थोड़ा सा टीजर दिया है, तो हमें ही नहीं हमारे सभी श्रोताओं को जो पाठक हैं जो कहानी और साहित्य से प्यार करते हैं, तो शुभकामनाएं इसके लिए। मनोज जी, आपने फिल्मों का जो जिक्र किया, फिल्में इतनी सारी देखी हैं और आपके जहन में इतनी कचोट के साथ अंदर पैठ किए हुए हैं, और कुछ ये जो भाषा का प्रयोग भी किया आखिरी सीन में और प्रति संसार में, तो आपकी क्या तमन्ना है कि आगे चल के आप फिल्मी राइटर बन जाएंगे, फिल्मों में लिखेंगे?
1: नहीं, फिल्मों पर मैंने लिखना इसलिए भी शुरू किया कि एक समय के बाद जब मैं विश्व की तमाम फिल्में जब देखता था, और उसके बरक्स जब मैं एशियन फिल्में देखता था, एशिया के देशों की फिल्में देखता था, एक समय मुझे ऐसा लगा कि पश्चिम जो है ना वही सारे पैरामीटर्स बनाता है कि फिल्म कैसी होनी चाहिए। कांस फेस्टिवल में लगभग उसी तरह की फिल्में आती है जिसका मानक पश्चिमी सिनेमा ने बनाया है। तो हर बार उनके चले हुए मानक, उन्हीं के पैरामीटर्स के कारण जो फिल्में बनती थी, और उनके ही सारे फेस्टिवल विश्व के जो बड़े जो फिल्म के फेस्टिवल होते हैं या जहाँ पे उनको बड़ी अवार्ड दिए जाते हैं, उनके मानक के आधार पर ही सारी चीज़ें होती हैं। एशियन फिल्में जो थी वो बहुत उसमें आती नहीं थी। और एक समय ऐसा आया जब उन पश्चिमी फिल्मकारों ने ये तय कर लिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि कहानी की जरूरत नहीं है सिनेमा को। बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये विजुअल माध्यम है और दृश्य में जो कुछ कहा गया है कैमरे के द्वारा वही फिल्म है, फिल्म को अलग से किसी कहानी की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा कि बिना कहानी के कैसे फिल्म हो सकती है। उसके बाद मैंने पश्चिम की ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एलिनेशन था, जिसमें सिर्फ सिनेमाटोग्राफी थी, उसके बरक्स मैंने एशियन फिल्मों पर लिखना शुरू किया। मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूँ अभी
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। उसमें एक अफगानिस्तान की फिल्म है ओसामा
0: जी,
1: उसके बाद एक कुर्दिश फिल्म है ब्लैक बोर्ड्स। ये दोनों फिल्म तो सबको देखनी चाहिए
0: जी जी जी।
1: शिक्षा, और वो भी नारी शिक्षा, उसका कितना महत्व होता है ऐसे देशों में जहाँ बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के। ये फिल्म और इन फिल्मों की कहानी, फिर मजीदी की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जफर पनाही की फिल्म है ऑफसाइड। ऑफसाइड का कथानक ऐसा है कि लड़कियां जो है वो फुटबॉल देखना चाहती, फुटबॉल का मैच, लेकिन ईरान में फुटबॉल मैच देखने की लड़कियों को पाबंदी है। तो ये लड़कियां सब पुरुष का वेश धारण करके, पुरुष जैसे कपड़े पहनकर अपने बाल कटवा करके वो फुटबॉल का मैच देखने जाती हैं। इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां।
0: तो ये सब अपने हिंदुस्तानी सिनेमा में भी।
1: हाँ, और मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया
0: जी।
1: उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा
0: जी,
1: और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: बिल्कुल मनोज जी, आपके लेखन में जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व, इसकी गहरी उपस्थिति संवेदनात्मक दृष्टि से आती है। तो एक लेखक के रूप में आपको सबसे ज्यादा विचलित और उद्वेलित क्या करता है?
1: दोनों चीजें एक सामने सामने होती है, एक सामाजिक यथार्थ है और दूसरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ। मोटे मोटे शब्दों में
0: जी,
1: कि किसकी किसी तरह की मतलब किसी भी घटना में कोई उसका पहलू जो होगा जिसके कई लोगों से जुड़ना, उसके बाद उसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन आना, और दूसरा खुद उसके भीतर किसी अनपेक्षित विचार का उठना और खुद उसका भीतर का संसार कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित होना। तो बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, उसके बाद भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है।
0: जी जी,
1: तो इसको गौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर का भी उतना ही है और भीतर का भी उतना ही है।
0: जी जी,
1: तो ये भीतर बाहर के जो कश्मकश है उसी में कहानियां हैं।
0: बिल्कुल। तो आपके लिखने का कोई खास तरीका होता है, कोई खास माहौल की जरूरत होती है कि समंदर के किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे या घर के अंदर?
1: नहीं, मैं तो शुरू से मेरी लिखने का जो तरीका था वो यही था। मैं मिठाई की जब दुकान थी नागपुर दुर्ग में, तो जो तराजू होती है मिठाई तोलने की, उसके नीचे एक डेस्क थी, वही मेरे लिखने का टेबल था। और लिखता था कुछ और कोई ग्राहक आ गया तो उनको मिठाई दे दी, वो चले गया तो फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी शुरू से ये हैबिट रही है कि अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, बार बार बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, तो मैं कहानी नहीं लिख सकता।
0: जी जी, ये तो बात उल्टी हो गई। अमूमन लेखकों को
1: हाँ एकांत चाहिए,
0: एकांत चाहिए। हाँ,
1: मैं अभी अपने वर्कशॉप में बैठकर लिखता हूँ।
0: हाँ, हाँ।
1: काम चलता है और सारे दिनचर्या अपने तरह से चलती रहती है और मेरा लिखना भी चलता है।
0: आपका जो लेखन है उसमें बड़ी वो शांति, हालांकि आप बड़े अशांत माहौल में लिख लेते हैं, लेकिन लेखन में शांति महसूस होती है पढ़ते हुए, और बहुत मंथर गति से पाठक पढ़ना चाहते हैं, आराम से, तसल्ली से, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हैं।
1: जी, जी।
0: लेखन भी है, मौन भी उतना ही है और संवाद भी उतने ही होते हैं, तो ये जो तादाद में है किस तरह से स्थापित करते हैं आप?
1: देखो, पाठक का तो ध्यान बहुत पहले रखना ही पड़ता है। लिखते समय मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मैंने जो एक वाक्य लिखा है वो खुद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और मैं एक एक वाक को चार चार पांच पांच बार लिखता हूँ। कहानी के भले मैं ज्यादा ड्राफ्ट नहीं बनाता, लेकिन वाक्यों के ऊपर मेरी बहुत मेहनत होती है और मेरी ये कोशिश होती है कि हर वाक्य में कोई एक शब्द चमकता हुआ हो, उससे पाठक मतलब जो पूरे वाक्य में जो बात कही गई है एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक तुरंत मतलब आकर्षित हो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उसको पढ़ने में मजा आता है। तो पढ़ने का जो सुख होता है, अगर जैसे हम पढ़ते समय, मैं पाठक भी हूँ ना भाई, मैं लेखक तो हूँ, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं, दूसरी सब चीजें। तो जिस उपन्यास में किसी लेखक की भाषा बहुत शानदार होती है, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी होती है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जब लिखूं तो पढ़ने वालों को मजा आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं।
1: उत्कृष्ट तो, चित्रकार नहीं।
0: ये आप कहते हैं तो नहीं, चित्रकारी नहीं। के शौक और चित्रकारी के बारे में बताएं।
1: नहीं, शौक तो है, शौक तो संगीत का भी है, लेकिन मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। चित्रकारी में हिम्मत कर ली थोड़ी, और इसके पीछे एक ऐसा किस्सा, एक उपन्यास मैंने पढ़ा था, मून एंड सिक्स पेनी, हिंदी में उसका अनुवाद है चांद और छह आने। उसका जो किरदार है वो सामान्य जिंदगी जीने वाला, वो LIC का एजेंट है। उसकी जो पत्नी है वो बड़ी कला प्रेमी है, और वो अपने सब मेहमानों को जब बुलाती है, उसमें साहित्यकार हैं, कलाकार, ये सब आते थे, इससे वो मिलाती नहीं थी कभी। तो एक बार एक उपन्यास का जो लेखक है वो उसके घर गया मिलने, और उसने कहा कि भाई आपके पति कहाँ हैं, उनसे मिलाओ हमको, बच्चे कहाँ हैं उनसे मिलाओ। बोले हमारे पति जो है ना कला में, साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, नहीं अभी उनकी मतलब मिलने की इच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं बोले आपके घर आया हूँ तो उनसे मिलकर जाऊँगा। तो मुलाकात हुई, उस पल दो पल की मुलाकात में एक दूसरे को दोनों ने क्या देखा, क्या समझा, पता नहीं। और ये दो चार दिन के बाद वो

0: एलआईसी का जो एजेंट था उसने घर छोड़ दिया, कहीं चला गया बिना बताए। बहुत खोजबीन हुई, बाद में मालूम पड़ा कि वो पेरिस चले गया और उससे पूछा गया भाई तुम क्यों साहब आ गए घर बार छोड़ के, तो बोले मुझे चित्रकार बनना है। तो भाई चित्रकार बनना है, लेकिन तुमने जीवन में कभी कोई चित्र बनाया? बोले नहीं बनाया, लेकिन मेरी इच्छा हो गई चित्रकार बनने की। ये उपन्यास मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा कोई स्केच में नहीं किया कागज, अच्छा। में बड़ा कैनवास, वो भी फ्रेम किया हुआ कैनवास नहीं, कैनवास का रोल पूरा।
1: जी जी।
0: मैंने कहा कि करना तो बड़ा करना है, भले वो किसी काम का ना हो, लेकिन हाँ। करना बड़े कैनवास
1: बड़े
0: में
1: फलक बढ़िया।
0: तो चार पांच चित्र मैंने बनाए और उसके बाद वो मामला रुक गया। तो उस तरह से चित्रकार नहीं हूँ, एक क्षणिक दौरा पड़ा था।
1: जी जी।
0: उस दौरे में दो चार हाथ मैंने चला लिए।
1: अपने श्रोताओं को बता दें कि आप निबंध लेखन भी करते हैं, अनुवाद भी किया है, कहानी उपन्यास तो है ही, और इस समय रिकॉर्डिंग के समय रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी नीता जी भी आई है स्टूडियो में, कांच के उस पार बैठी है। नीता जी का कितना योगदान है आपके लेखन में?
0: नीता जी का योगदान ऐसा है,
1: सहयोग
0: नहीं बड़ा योगदान है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लिखने से पहले सुनाता हूँ, तो कोई और नहीं होता, जब मेरा कोई दोस्त नहीं होता तो ये अकेले मेरी श्रोता होती है। कई मैंने कहानियां, जैसे अभी अनुभूति कहानी जो है वो मैंने अपने ऑफिस से फोन करके नीता को सुनाई कि अभी ये ख्याल मेरे दिमाग में आया है। तो नीता मेरी पहली श्रोता होती है और उसके एक्सप्रेशन मुझे समझ में आ जाता है कि कहानी ठीक बन रही है कि नहीं। इससे बड़ा योगदान क्या होगा?
1: जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: उपन्यास जो है काले अध्याय,
1: हाँ हाँ।
0: वो पूरा उपन्यास मैंने अपनी बेटी को सुनाया लिखने से पहले। उसको सुनाता था रात, उसको बहुत जिद होती थी कहानी सुनने की, जब वो छोटी थी तब भी
1: जी।
0: रोज पापा कहानी सुनाओ। जब तक मैं उसको कोई कहानी और बना कर कोई भी कहानी सुनाता था जिसका कोई सिर पैर ना हो,
1: जी जी,
0: लेकिन जब तक नहीं सुनाओ तब तक उसको नींद नहीं आती थी। तो लोरी सुनने के बजाय वो कहानी सुनती थी।
1: क्या बात है।
0: तो ये मेरा मतलब तरीका रहा है कि मैं अपने आपको जो है ना कभी छुपा कर नहीं रखता कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको अगर बता दूंगा तो किसी की टोक लग जाएगी और मैं लिख नहीं पाऊंगा।
1: खुली किताब होना चाहिए एक लेखक को। मनोज जी, बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी जानकारी वाली बातें आपने कही है, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, और हमें तो सचमुच बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो घड़ी की सुइयां अब विराम लगाने को कह रही है, फिर कभी एक लंबी बातचीत आपसे करना चाहेंगे। आज बस इतना ही। आप आए विविध भारती के स्टूडियो में और इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया, शुक्रिया।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उपन्यासकार, कहानीकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के मेहमान।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: ओ सांवरे इस एल्बम से सुन रहे थे भजन आप, जिसे गाया अजित कल्ले ने और मनोहर राय ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: कितने ही रंग इस एल्बम से आप सुन रहे थे बशीर बद्र का ये कलाम चंदन दास की आवाज में।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गजल जिसे लिखा है रिफत सारोश ने और सितम एल्बम से चंदनदास की आवाज में। इसे सुनते हैं।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना ताना एक समान।

0: खजाना। इस एल्बम से आप सुन रहे थे तलत अजीज की आवाज में कलाम, जिसमें संगीत भी तलत अजीज का और बोल कतील शिफाई के।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, नरेश परेश का संगीत, और ये गीत हम सुनवा रहे हैं आवारगी एल्बम से।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: जान इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे जिसे लिखा फैज अनवर ने, निखिल विनय का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: हलचल हुई, जरा शोर हुआ।

0: आजा नचले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजों में गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत, फिल्म जाने मन।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनके बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर

0: पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ आपने सुना। सुजाता फिल्म के इस गीत में आवाज आशा भोसले और साथियों की। आज गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार सचिन देव बर्मन की जन्म जयंती है और उन्हीं के मिले जुले गीत आपको इस कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के

हमसे कुछ न बोल। 9:11 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे विविध भारती पर यादों की महफिल। आपको याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिले कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की है। और रात 8 बजे हवा महल में सुनेंगे झलकी अंगारे, लेखन सोमनाथ नागर का, निर्देशन सत्येंद्र सरत का। और इस वक्त कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी लौटते हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके गीतों के जरिए।

0: पागल मोए, कर गई पागल मोए, कर गई पागल मोए। मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल।
1: अरे
2: बात एक रात की। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में मजरू।

0: सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संकेत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: सचिन देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आपने सुना फिल्म गाइड से। शैलेंद्र ने इसे लिखा। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
4: पूरे माझी

कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनकी जन्म जयंती पर।

0: शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ। सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में अभिमान फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आज याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके जन्म जयंती पर, और उन्हीं के गीतों के जरिए यादों की महफिल कार्यक्रम आज गुलजार है। आइए सुनते हैं अनामिका फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: अनामिका फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देव बर्मन की तर्ज।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आराधना फिल्म से गीत आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के गीत आपको सुनवा रहे हैं। चलिए सुनते हैं अंदाज अपना अपना फिल्म से ये गीत। अलका याग्निक और SP बालासुब्रमण्यम की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, तुषार भाटिया का संगीत।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत आपने सुना सुजाता फिल्म के इस गीत में। यह हमारे सवाल का सही जवाब था जो आपने बिल्कुल सही बताया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: तो विविध भारती के जश्न में तो आप सभी शामिल होने ही वाले हैं, लेकिन अभी इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम, जिसमें आज हम वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर कुछ उम्र की बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र तो जीवन के मौन यौन परक शैशव बालक किशोर युवा प्रौढ़ वृद्ध और अति वृद्ध जैसे विभिन्न पड़ावों का एक स्वरूप मात्र है। इसमें किशोरावस्था को उस मौन यौन परक रवानी की तीव्रता अपने नियत सुर लय ताल जैसे दर से मृत्यु पर्यंत नृत्य कर रही है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बातें लिख दी हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक बचपन था, आंगन में नंगे पांव दौड़ते हुए छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाते हुए बिना किसी चिंता के शाम तक खेलते हुए एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर पूरा बचपन एक सुंदर सपना लगने लगा। और शायद यही तो सफर है, बचपन की मासूमियत से उम्र की समझदारी तक, काले बालों की रवानी से चांदी की कहानी तक, और दूसरों के लिए जीते जीते एक दिन अपने ही भीतर लौट आने तक। मगर सच कहें तो यादों में आज भी वही बच्चा कहीं मुस्कुरा रहा है। वाकई अपने अंदर अगर बचपन जीवंत है तो बहुत सी बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे कल की ही बात हो। हमारे एक और साथी कहने कि वक्त का पंछी बचपन और यौवन के पड़ावों से उड़ते हुए

0: ये हमें बताइए आप, और साथ ही ये भी बताइए कि जिस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उस फिल्म का नाम क्या है, और ये भी बताइए कि आपके लिस्ट में क्या ये गीत शामिल था।
1: क्या?
2: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या क्या?
2: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी

ये भी लिख भेजा कि रणधीर कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और बबीता इस फिल्म में नजर आते हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज के युवकों को हम 60 प्लस वालों के विचार अच्छे नहीं लगते, ना ही उन्हें हमारी सलाह उनके मन को भाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर इस दिन शुभकामनाएं सिर्फ ना दें बल्कि अपने वरिष्ठों को समय दें, उनकी बातें सुने, उनके अनुभवों का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन का सक्रिय हिस्सा बनाए रखें, क्योंकि किसी घर में बुजुर्गों की मौजूदगी केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि उस घर की स्मृतियों, संस्कारों और आशीर्वादों की छांव होती है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ करना चाहते पर देखो ना, जैसा पहले दौड़ते थे अब नहीं दौड़ पाते, और हाँ रस्सी भी तो नहीं कूद पाते, पर जो नहीं कर पाते वो क्यों सोचें, जो कर पाते हैं क्यों ना उससे खुश हों। तो हम वॉक करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, घर के सभी काम कर लेते हैं, अगर सहायिका ना आए तो झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। वैसे अब हम वरिष्ठ नहीं हैं अभी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं याददाश्त के बारे में, यानी कि वो कह रहे हैं कि याददाश्त के बारे में टोका जाता है जो बार बार, तो वो अच्छा नहीं लगता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक था बचपन, ये जो गीत है लता जी का गाया हुआ, इसमें बचपन पूरा समाया हुआ है। बचपन को याद करते हुए करते हैं तो एक सुकून सुखद एहसास होता है, लेकिन जब बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक याद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा गाड़ी में सवार हुए बहुत से यात्री सफर बीच में ही छोड़ गए, उनकी यादों की गठरी बांधे हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि अक्सर ये गीत हम जब होंगे 60 साल के, मैं अपनी धनपत्नी को सुनाता हूं और कहता हूं बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की, तो धनपत्नी मुस्कुराकर गर्दन हिला देती और मेरे से पूछती है और आप, मैं कहता हूं कोई शक, हम तो हंसते ही हैं, साथ में बच्चे भी मुस्कुराते हैं। क्या ही बेहतरीन बात आपने कही। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से साथियों ने बताया कि ये गीत उनकी लिस्ट में तो शामिल था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चांदी से चमकते बाल किसी को अच्छे नहीं लगते, फौरन काले कर लेते हैं। क्या आप भी इनमें शामिल हैं या आप अपने चांदी से चमकते बालों के अनुभवों को सबको दिखाते हैं? चलिए हमें और एक बात जो याद आई जो आपसे पूछनी है वो ये कि क्या बचपन की कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी याद है जो आपके मन में अब भी ऐसे ताज़ा है जैसे कल की ही बात हो? तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किस पर फिल्माया गया है, यानी जो पर्दे पर नजर आते हैं वो कौन है।

कल आज और कल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ तक कि आपने तो सारे जवाब हमें दिए हैं कि किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ है और शैली शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। यहाँ तक कि आपने

0: वक्त फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में। हमने पूछा था पर्दे पर कौन नजर आते हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बलराज साहनी और अचला सचदेव।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: हमारे साथी कह रहे हैं बहुत सी बातें, वो कह रहे हैं कि हम तो अपने चांदी जैसे बालों को कलर कर लेते हैं पर उम्र छुपाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एवरग्रीन ब्यूटी को बनाए रखने के लिए। उम्र तो हम इस धाक के साथ बताते हैं कि देखो इस उम्र में भी हम कितने एक्टिव और अपडेटेड हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बाल तो 50 पर सफ़ेद हो गए लेकिन आज तक हमने कभी डाई नहीं करवाया, अब तो 72 पहुँच गए। तमाम मौक़ों पर लोगों ने बाल काला करा लीजिए सलाह दी लेकिन मैंने कहा कि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक नहीं कई सारी शरारतें जिनमें पुरानी मिठास हो, बारिश होती ही छत पर जाकर भीगना और फिर माँ की डांट से बचने के लिए चुपके से कपड़े बदल लेना, दोस्तों के साथ बिना बताए कहीं घूमने निकल जाना और लौट कर ऐसे बनना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी की आंखों पर हाथ रखकर पूछना कि बताओ मैं कौन, गली में खेलते खेलते हार जाएं तो कहना चलो एक आखिरी बार और, बिना किसी वजह के जोर से हंसना और फिर दूसरों को भी हंसा देना। ये बचपन की ऐसी बातें हैं जो इन्हें याद आती हैं जैसे कि कल की ही बात हो। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज विश्व वृद्ध जन दिवस है, गीत जब हम होंगे 60 साल के, ये गीत तो इनकी पसंद पर और बहुत से साथियों की पसंद पर चल ही चुका है। हमारे एक साथी कह रहे हैं किस बातों पर टोका जाता है वरिष्ठ नागरिकों को, जो हमने पूछा उस पर वे कहने की बहुत बोलते हैं और बिना मांगे सलाह देते हैं, इस बात पर वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर टोका जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लगातार टोका जाता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा आप बाहर मत निकलो ये बात उन्हें कही जाती है, तब अंदर ही अंदर मायूस हो जाते हैं। क्यों जब हम 60-70 वर्ष के हो जाते हैं तब उनमें भी बचपन आ जाता है, जब वो बाहर घूमना उन्हें अच्छा लगता है, मेरी समझ ऐसी है। उनका ऐसा कहना है हमारे साथी का, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब बचपन का एक दौर वापस आ जाता है जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती वो इसलिए क्योंकि कभी कभी कहीं गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, उससे चिंतित रहने की वजह से लोग घर के जो लोग हैं परिवार के सदस्य हैं वो मना करते हैं, उन्हें बहुत चिंता रहती है, लेकिन इसमें दोनों ही किसी तरह से उलझ जाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कहने की उम्र भले ही गणित के अंकों की तरह बढ़ती रहती है लेकिन मन यादों के गलियारों में कुछ कुछ बचपन थोड़ा थोड़ा यौवन काल रहता ही है, अवस्था तो गतिशील है और अंतकरण बाल सुलभ रहता है, बाल्यकाल जीवन का स्वर्णिम सोपान होता है, इस अवस्था से जुड़ी जो यादें हैं वो बचपन की उम्र के बाद के लिए किसी राजशाही खजाने की जैसी होती है, यौवन की अवस्था की यादें भी कम हंसी नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में बहुधा जीविका के संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ, थोड़ा कठिन दौर रहा करता है, फिर बचपन के बाद की अवस्था बालों में आई रजत सफेदी उम्र के बढ़ जाने का एहसास तो कराती ही है लेकिन उसमें जो कोमलता है वो

बादलों में भी नहीं होती, जो प्रेम की परिपक्वता, जीवन से जुड़े अनुभव के साथ बुद्धिमत्ता के भी द्योतक होती है। इस उम्र में बाल सुलभ बन यादों के पिटारे से कुछ न कुछ निकालने में लगा रहता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर आज की इबारत बनाई गई है, शायद आज सीनियर सिटीजनशिप की सीनियर सिटीजन को धन्यवाद दे रहे हैं वो इस दिवस की, और कुछ यादें कुछ गीत इन्होंने अपनी पसंद के लिखे हैं। देखना है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट कितनी मैच करती है आज। तो अब आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं, आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत हमने चुना है, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं और अपनी उम्र को मात देते हैं, ये हमें बताइए।

मीठे बोलों में वही मिठास और धड़कनों में वही चाहत रहती है। उम्र की ढलती शाम में किसी अपने का चेहरा, उसकी नजर और जुल्फ का साया साथ हो तो जिंदगी आज भी खूबसूरत लगती है। तो इस खूबसूरत जिंदगी के नाम ये गीत आपको सुनवाते हैं और आपको ये पहचानना है कि किसने इस गीत को लिखा है।

नौनिहाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। बोल किसके हैं यही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन डे पर सलाम है हमारे उन एवरग्रीन रॉक स्टार्स को जिनके चांदी से चमकते बालों में बादलों जैसी नरमी है और इनके मीठे बोल आज भी धड़कनों को जवान बना देते हैं। ऐसा हमारे साथी कह रहे कि पापा का नया स्मार्टफोन सीखना हो या मम्मी की पुरानी सहेलियों संग गपशप, इनकी जिंदगी की ढलती शाम भी किसी सुरीले सफर से कम नहीं। तो आज अपने घर के इन एवरग्रीन बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनका पसंदीदा गाना गुनगुनाइए और उनके तजुर्बों को एक जादू की झप्पी दीजिए। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन के हर पड़ाव हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, चाहे बचपन हो, जवानी हो या फिर बुढ़ापा। हम जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं। एक ओर बचपन हमें पुस्तकों के माध्यम से नैतिकता सिखाता है, वहीं दूसरी ओर जवानी हमें संघर्ष और सामाजिक जीवन और सामाजिक ज्ञान।

का बोध करवाती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन का सफर महकती यादों का सफरनामा है, जिसमें खूबसूरत यादों के साथ जीवन का अनुभव होता है, जो किस्से कहानियों के रूप में बयान होता है। हर किस्सा कोई ना कोई सबक दे जाता है। उम्र एक पड़ाव है, जिंदगी तो बस जिंदा दिली का नाम है, क्योंकि दिल हमेशा जवान रहता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कितने मौसम बीत गए हैं, बालों में चांदी उधर आई पर मन के रंग लाल पीले हैं। लोग भले ही कहे कि उम्र ढल रही है, पर हम तो कहते हैं कि उम्र की शाम सुहानी है। हम दोनों का साथ है अगर तो हर दिन एक नई कहानी है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं क्या कि आज की भारत में गीत पहचानने में उन्हें उलझन हुई, लेकिन कुछ गीत उन्होंने पहचाने और हमें ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उनके जो भी गीत हैं वो सारे शामिल हो चुके हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये जीवन का चक्र है। बचपन की शरारतें जीवन के जवानी की मीठे पल, दो दिलों का टकराना बुढ़ापे में, उन सुनहरे पल को याद करना। शरीर जरूर कमजोर हो जाता है पर दिल हमेशा जवान रहता है। हमें इस जज्बात में जीना है, जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं, मेरे लिए तो सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े ज्ञानवर्धक विविध भारती है, जो मेरे पिताजी ने सुनी, मेरे दादाजी ने सुनी, परिवार ने सुनी, अभी मैं सुन रहा हूँ, अब आने वाला कल मेरे बच्चे सुनेंगे। तो सबसे बड़े विविध भारती की ये वरिष्ठ उद्घोषक है, जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी से रूबरू कराते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बुढ़ापा अजीब है। हमारे दादा दादी एक दिन नहीं जाता जब झगड़ा नहीं करते हों, लेकिन एक पल एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते। दादी को अगर दादाजी खाना ठीक से न खाए तो खुद भी ठीक से नहीं खाती हैं। उनको एक ही बात की टेंशन है कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तो एक वक्त के बाद ये दोनों आपस में एक सोल की तरह बन जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की रचना शाश्वत सत्य को रेखांकित करती है कि शरीर भले ही उम्र की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, पर मन और भावनाएं हमेशा तरोताजा रहती हैं। बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी के प्रेम और मुलाकातों तक हर पल की यादें बुढ़ापे में जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही अभी 26 की है, पर दिल सदियों पुराना प्यार समझता है। तुम्हारे मीठे बोलों पर ये दिल आज भी हद से ज्यादा धड़कता है। वैसे तो नजरें फिराने को हंसी चेहरे बहुत हैं इस महफिल में, पर क्या करें, ये दिल तो सिर्फ तुम्हारी जुल्फ के साए में ठहरता है। भाई क्या बात है। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है, आवाज भी पहचान लीजिए।

0: अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती के जश्न में तो आपका इंतजार रहेगा ही, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उस घर के लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके घरों में बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से भी पहले महत्वपूर्ण होता है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि आगे चलकर हम भी बुजुर्ग होंगे। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड। वहीं हमारे एक साथी कह रही है, मैं तो सीनियर सिटीजन में आ गई हूं, पर मैं अभी भी बच्चों की तरह ही सोचती हूं। मेरा अपने से छोटों में मन लगता है। मैं अपने आप से ही फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और भी साइट्स देखती रहती हूं। विविध भारती में भी एक्टिव हूं, फेसबुक के कई म्यूजिक ग्रुप पर भी एक्टिव हूं। तो इसी तरह से अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उम्र का जो असर है, उम्र की जो भी ऐसा कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सारी चीजें बिल्कुल दूर होती चली जाती हैं। और आपको देखकर हम तो बस यही कहेंगे जो गीत कहने वाला है आपके लिए। फिल्म का नाम बताइएगा।

नजर नहीं हटती। कभी कभी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब तक हम अपने मन को बच्चे जैसा रखते हैं तब तक हम कभी बूढ़े नहीं होते। बहुत ही अच्छा संदेश, और इसी संदेश के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती जा रही हैं, जीवन शैली बेहतर हो रही है और हमारी जीवन अपेक्षा बढ़ती चली जा रही है, यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा है, बुजुर्गों का हिस्सा है। बुजुर्ग हमारे समाज का एक बहुत जरूरी अंग है। उन्होंने अपनी एक शानदार जिंदगी बिताई और अब वो सेवानिवृत्त जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें भी अपना प्यार चाहिए, उन्हें भी परिवार के लोग चाहिए जो थोड़ी देर उनके साथ बैठें, बातें करें, उनकी समस्याओं के बारे में, दुनिया भर के बारे में उनसे विचार विमर्श करें और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें।

बुजुर्गों को सिर्फ अपना समय देने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ जिस तरह से तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उन्हें इस पूरी धारा में शामिल करने की जरूरत है। ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी थोड़ी देर उनके पास बैठे, उन्हें मोबाइल चलाना, मोबाइल की नई तकनीक सोशल मीडिया सिखाए, उन्हें कंप्यूटर या टैबलेट चलाने के गुर सिखाए, उसकी ट्रिक सिखाए, और उन्हें ये भी बताए कि कैसे वो अपने जीवन को रचनात्मक बना सकते हैं। कई घरों में ये भी देखा गया है कि नई पीढ़ी के लोग पत्रिकाओं को पढ़कर अपने बुजुर्गों को सुनाते हैं। ये भी एक तरीका है बुजुर्गों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का। अब हमें ये सोचना है कि हम अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों के साथ किस तरह अच्छा बर्ताव कर सकते हैं और उनकी उंगली पकड़कर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ सकते हैं।

जिंदगी को जीकर ही समझा जा सकता है। बुजुर्गों के पास जीवन का एक विराट अनुभव है और ये अनुभव नई पीढ़ी के लिए एक बहुत जरूरी मार्गदर्शक बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बुजुर्गों को दरकिनार न करें, हाशिए पर न रखें, बल्कि उनके अनुभवों से सीखें, क्योंकि दुनिया की जैसी समझ बुजुर्गों के पास होती है वो नई पीढ़ी के पास आ ही नहीं सकती। उन्होंने जिंदगी का एक लंबा सफर बीहड़ रास्तों पर तय किया है, अपनी जेब में अनुभवों को जमा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद भी लेना है, उनके अनुभवों से सीखना भी है और उनके साथ बैठकर समाज को बेहतर

ये थी आज की त्रिवेणी। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। हमें अपने आसपास के बुजुर्गों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी बात के साथ इजाजत लेता हूं, मैं आपका दोस्त यूनुस खान।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के

0: शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने ये पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरफ फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्याय

0: प्राधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
3: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
4: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
3: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
4: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसे जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
5: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्केफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: किशोर कुमार की आवाज में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। और इससे ठीक पहले आपने सुना तीसरी मंजिल फिल्म का गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
2: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: देवियां फिल्म के गीत में मोहम्मद रफी को आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। राहुल देव बर्मन का संगीत समाधि फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

102.8 पर ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। ठीक 3 बजे आप सुनेंगे मराठी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित।

0: होता है कि एक ही चीज अब मत खाते रहिए कि हमने पनीर खाने तो पनीर चला ही चला जा रहा है, चला ही चला जा रहा है। बाकी चीजों को भी मौका दीजिए अपनी स्वाद को पहचानने का। तो दालें हैं और प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, और साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, और बहुत से आवश्यकता अनुसार जैसे कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं। तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
1: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोले अरे यार हरी सब्जियां क्यों खानी है, लेकिन अगर उसको स्वादिष्ट तरीके से हम पकाते हैं तो उसका एक अलग तरह का जायका बढ़ जाता है। और ऐसे लगता है जिसको देख के कल को ऐसे लगता था कि नाक सिकोड़ते थे कि ये नहीं खाना है, वो हमारी पसंदीदा डिश बन जाती कि ये नहीं बना, चाहे वो लौकी ही क्यों ना हो, क्योंकि लौकी बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन लोग उसे खाना नहीं चाहते, उनके कहते हैं कि लौकी कद्दू क्या खाना है।
0: बिल्कुल, लौकी को ही नहीं, अगर हम दाल में, चने की दाल में डाल के बनाए क्या स्वाद बनती है वो।
1: हाँ, तो वही तो बात है कि अगर जब हम उसको बनाने का तरीका अगर बदल देते हैं तो ये सब्जियां भी बोल सकती कि भाई मैं जब पहले खाने की मेज पे आती थी कैसी शिकायतें होती थी, अब देखो, अब मुझे देख के मुंह मत बनाओ, मुझे देख के थोड़ा मौका तो दो। अलग अलग तरह, अब लौकी का अगर रायता बनाया जाए तो कोई मुंह ना
0: लौकी का कोफ्ता, वाह क्या क्या बात है।
1: देखिए लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका है।
0: कहने की मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते वो किस तरीके से कितने कितने तरीके से बन सकती है।
1: तो इस तरह से बन सकती है, व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की, जब ज्यादा बातें हो जाती है ना तो हमें एक गीत चला लेना चाहिए,
0: क्योंकि थोड़ा थोड़ा हटे वहां से
1: दिमाग, और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया जाएगा।
0: बिल्कुल, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा।

सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज

0: तो आरती जी, 3 तारीख का जो जश्न है वो तो बड़े जोर शोर से होने वाला है, और हमारे सभी जो श्रोता हैं वो भी फेसबुक पेज के जरिए लाइव सुनेंगे, शायद
1: सबको इंतजार होगा,
0: लाइव सुनने तो मिलेगा ही उन्हें।
1: बिल्कुल। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ, जो कि है कहानी पद्मश्री की। तो आज हम लेकर आए हैं जिनकी कहानी, वो है लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और कभी कभी समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद की नहीं, बस एक बड़े सपने की जरूरत होती है, और एक ऐसा सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए देखा जाए जिनकी आवाज उठाने के लिए उनके साहस की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी प्रेरणादायक महिला है, क्योंकि इन्होंने बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और कर्ज लेने की जगह नहीं माना, बल्कि उसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम भी बनाया। जैसा कि आपने नाम कहा, लक्ष्मी बरुआ हैं ये, और असम की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महिला है। उनका जीवन विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
1: बिल्कुल। और लक्ष्मी बरुआ का जन्म हुआ आसाम के जोरहाट जिले में हुआ था उनका जन्म, और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उनका हौसला जो था वो बना रहा।
0: 1973 में प्रभात बरुआ से इनका विवाह हुआ और इसके बाद इनकी जिंदगी ने नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी के लिए वो सुलझे हुए जीवन साथी और मेंटोर दोनों साबित हुए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि 1980 में जब वो जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई, तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: बहुत बड़ी बात है ये उस समय के लिए खास तौर पर। और विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए काम करने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। ग्रामीण विकास, व्यस्क शिक्षा, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता और वंचित लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था कि आर्थिक निर्भरता जो होती है वो महिलाओं के लिए जो उनका जीवन होता है उसको कितना सीमित कर देती है।
0: जी। तो लक्ष्मी बरुआ ने बैंक में काम करते हुए एक ऐसी समस्या को महसूस किया जो आज हमें तो छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। जैसे कि गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो बैंक तक आती थीं, लेकिन बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार मदद ही नहीं मिल पाती थी।
1: बिल्कुल। और यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि अगर बैंक की व्यवस्था इन महिलाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकती, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो महिलाओं की जरूरतों को समझे। और 1983 में उन्होंने जोरहाट के दक्षिण में महिला समिति की शुरुआत की,
0: और महिलाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास भी सुरक्षित बचत और वित्तीय जानकारी के पर्याप्त साधन नहीं थे। महिलाओं के लिए बैंक खोलने का विचार उनके मन में 1990 के आसपास आकार लेने लगा था।
1: बिल्कुल। लेकिन सपना देखना तो आसान था इतनी बड़ी बात को, लेकिन उसे सच करना उतना आसान भी नहीं था। लक्ष्मी बरुआ को कई कठिनाइयों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किए और उसके बाद उनका सपना वास्तविकता की दिशा में बढ़ सका, और अंततः 1998 में जोरहाट में कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई।
0: और इस संस्था का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवा देना नहीं था, इसका उद्देश्य था महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, उन्हें वित्तीय जानकारी देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना। और ये बैंक अपने स्वरूप में बहुत ही खास था।
1: ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था और इसके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक ने कम आय वाले लोगों और महिलाओं तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। छोटी बचत से लेकर ऋण और वित्तीय जागरूकता तक इस पहल ने बैंकिंग को उन महिलाओं के करीब लाने का प्रयास किया जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थीं।
0: और एक छोटा सा विचार है आरती जी, और ये छोटे से विचार ने ही धीरे धीरे हजारों खातों और अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया। लक्ष्मी बरुआ की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि महिला को सिर्फ सहायता देना नहीं है बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना होगा।
1: ये सबसे बड़ी बात है कि अवसर देना चाहिए उनको।

0: और क्योंकि जब किसी महिला के पास अपनी कमाई होती है, बचत होती है, बैंक खाता होता है और आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास होता है, तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
1: हाँ, और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है, इसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी बरुआ की कहानी केवल बैंक की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है।
0: बिल्कुल, उनके सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिला। 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े सम्मान के माध्यम से कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य को भी राष्ट्रीय पहचान मिली और लक्ष्मी बरुआ को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर आया वर्ष 2021 जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: और ये सम्मान उनके लिए ही नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना जिनके लिए उन्होंने वर्षों तक काम किया। लक्ष्मी बरुआ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा बदलाव वही है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। तो जब महिलाएं काम करती हैं, कहते हैं ना वो जिस तरह की बात है कि महिला अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार पूरा समाज शिक्षित होता है, उसी तरह से जब एक महिला ये सोचती है कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है या समाज के लिए कुछ करना है तो बदलाव जरूर आता है।
0: बिल्कुल, और एक बदलाव हम लेके आते हैं कि एक गीत संगीत में से कोई गीत सुन लेते हैं।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: तो आरती जी, हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथियों ने लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जियां उनके घर में बनती हैं।
5: अच्छा,
4: तो हमारे एक साथी कह रहे हैं हम तो सब्जी आजकल गोभी की ज्यादा खाया करते हैं। कल आलू की सब्जी खाई थी, आलू भी स्वादिष्ट थे। आगरे के थे वो मीठे होते, पंजाब का आलू स्वादिष्ट नहीं होता है। भाई हमें तो आलू एक जैसा ही लगता है सारा।
5: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि सही कहा आपने, आलू ही जीतेगा, सबसे ज्यादा आलू पसंद है हमारे घर में सबको। पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पनीर सभी को पसंद होता है, चलिए आपको पसंद नहीं है।
4: नहीं, सभी तो आप को आलू खा सकते हैं। सभी को आलू भी पसंद नहीं होता, सभी को कुछ भी चीज़ पसंद।
5: क्योंकि आलू में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, कहते ना उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
4: हमारे एक साथी कह रहे कल ही हमने हमारे घर पनीर बनाया था। छोटी वाली बहन ने बकायदा प्यार से दही मटर छोले और आलू मिक्स कर करके बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि आज तो वो उपवास है। फिर क्या हुआ वो रह गई।
5: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि प्लेन रोटी के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, जैसे कि तुमने बताया था नहीं।
4: हाँ।
5: क्योंकि उसमें मसाले कम जाते हैं और पनीर का रियल टेस्ट मिलता है। ये तो सही बात है, मसाले कम डालो तो उसका जो स्वाद है ना वो निखर के आता है।
4: बिल्कुल। और पनीर की बात भी एकदम निराली है, क्योंकि एक जैसा सफेदी लिए पनीर होता है ना, उसको इतना ज्यादा मसाले में डालने में ऐसा लगता है कि कुछ तो बेचारे को हम बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना। हमारे एक साथी जो अलग अलग बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए सब्जी की जो बातें उन्होंने लिखी, आलू सबके साथ चल जाता है,
5: सबके साथ।
4: तो आलू हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना चाहिए कि हम सबके साथ और अकेले भी हमें खाया जा सके, खाया तो नहीं जा सके बट अकेले भी हम चल सके अपने जीवन में और सबके साथ मिलकर भी चल सके। लेकिन पनीर को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना। खाली पनीर भी खाया जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे सेक के खाते हैं, भले चाट मसाला डाल के खाते हैं, लेकिन तो पनीर उसका जो टेस्ट बढ़ जाता है
5: वो तो है नहीं है। लेकिन पनीर को बैगन के साथ नहीं खा सकते ना। हाँ। आलू को आप बैगन के साथ भी खा सकते हैं,
4: आलू को पनीर के साथ भी खा सकते हैं।
5: बिल्कुल, आलू को पनीर के साथ और खा सकते हैं, और साथ ही जो बैगन के साथ में आलू खा सकते हो। ऐसी सब्जियां जिनके साथ पनीर नहीं खा सकते उनके साथ भी आलू चल सकता है, यानी कि आलू जीतता है।
4: तो आलू को हम जिताएं उससे पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
1: सखी सहेली,
0: सिर्फ हम आलू गोभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगीत।
1: हाँ, बिल्कुल, आलू गोभी की हमने बात कर ली है, अब हम संगीत पे आते हैं। तो संगीत कुछ सुरों का मेल भर नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हम गीत सुनाते हैं, जब कहते हैं ना कि हमने कार्यक्रम के बारे में बता दिया, सब विषय बता दिए, अब पहले गीत, यानी कि शुरुआत हम जब कार्यक्रम की संगीत से करते हैं ना, तो पूरा जो कार्यक्रम है वो संगीतमय हो जाता है ना, एक रिदम में आ जाता है।
0: हाँ, और जब हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं तो बीच में एक संगीत आता है, तो एक अलग सी अनुभूति भी होती है, भाव अलग हो जाते हैं।
1: और कभी कोई धुन हमें हंसा देती है, तो कभी वही धुन अनकहे आंसू भी ले आती है।
0: और कभी ऐसा भी महसूस किया होगा हमारे श्रोताओं ने कि कोई पुराना गीत अचानक जब सुनाई देता है तो हम बरसों पीछे लौट जाते हैं, वही कमरा, वही मौसम।

0: वही चेहरे और वही अधूरी सी कहानी। संगीत के पास यादों को सहेज कर रखने की एक अनोखी शक्ति होती है, और एक धुन जिसे हमने शायद वर्षों से नहीं सुना है, लेकिन पल भर में अगर हमने उसे सुना तो पल भर में बीते हुए समय का पूरा दरवाजा खोल देती है।
1: कभी कभी लगता है ना, जब कोई पुराना गीत सुन रहे होते ना, तो एकदम से खो जाते हैं उसी में, उस पूरा दृश्य हमारे सामने आने लगता है। तो संगीत खुशी में हमारा साथी है और उदासी में हमारा हमराज। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारा मन थका हुआ होता है, कोई मधुर राग भीतर जैसे धीमी सी रोशनी जला देता है। जब दिल किसी बात से भारी होता है, संगीत उस दर्द को शब्द दिए बिना समझ लेता है। और शायद इसीलिए कई बार हम किसी से अपनी परेशानी नहीं कह पाते, लेकिन एक गीत सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा था। बिल्कुल
0: हाँ, तो वो गीत सारी बातें हम तक साझा कर देते हैं। संगीत की खूबसूरती भी तो यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय राग हो, लोकगीत हो, भजन हो, या कोई सादा सी कोई धुन हो, हर सुर अपनी तरह से मन को छूता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी एक ही संगीत पर मुस्कुरा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और बचपन में माँ की लोरी से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक संगीत हमारे साथ चलता है। त्योहारों में भी गीत है, प्रार्थनाओं में स्वर है, प्रेम में धुन है, और विदाई में भी संगीत की एक धीमी सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे जीवन की कहानी शब्दों से नहीं सुरों से भी लिखी जाती हो।
0: हाँ, और शायद संगीत का सबसे बड़ा जादू भी तो यही है ना आरती जी, कि हम हमें हमारे भीतर से मिला देता है। कुछ देर के लिए अगर दुनिया की भागदौड़ जो होती है वो रुक जाती है, आंखें बंद करते हैं और हम अपने ही मन की आवाज सुनने लगते हैं संगीत में डूबकर।
1: और इसीलिए जब कभी मन उदास हो, कोई प्यारी सी धुन को आप सुन सकते हैं। हो सकता है समस्या वही रहे, लेकिन उसे देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाए, क्योंकि संगीत हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलता, कभी कभी वो हमें इतना बदल देता है कि वही परिस्थितियां हमें थोड़ी आसान लगने लगती हैं।
0: और संगीत सुनाई सिर्फ नहीं देता है बल्कि महसूस होता है, याद बनता है, और कभी कभी जीवन भर हमारे भीतर गूंजता रहता है। और यही कारण है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद और यूनेस्को समाज में संगीत कला को बढ़ावा देने और शांति और भाईचारे के आदर्शों को स्थापित करने के लिए 1 अक्टूबर का दिन संगीत जागरूकता दिवस के रूप में मनाए जाने के रूप में हमें मान्यता मिली है। संगीत को हम इस दिन मनाते हैं, या कहें कि जागरूक किस तरह से हो सकते, स्वास्थ्य के लिए भी कई बार संगीत की जो पद्धतियां हैं इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे हम अलग अलग रागों से संबंधित अगर आप बातें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से राग को पढ़कर अलग अलग भावों से आप निजात पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, और कई कई अब तो अस्पतालों में भी एक संगीत थेरेपी भी दी जाती है लोगों को, मरीजों को, जिससे कि वो अपने अंदर से खुश हो सके, उनके अंदर एक उम्मीद जाग सके। तो ये जागरूकता दिवस है। और हमारे जो साथी हैं क्या लिख रहे हैं, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत तो मेरी रूह है, जान है, जिंदगी है, जब से होश संभाला है तब से संगीत और गीत सुनती आई हूं, और विविध भारती मेरे रेडियो ट्रांजिस्टर और अब फोन में बजता ही रहता है, मेरे किचन, बाथरूम और आराम करते समय, सोते समय भी बजता है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आ गई हूं, पर मुझे शुरू से ही पुराने फिल्मी गीत संगीत बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा कि KL सहगल, पंकज मलिक, CH आत्मा और हेमंत कुमार, लता रफी, गीता दत्त बहुत पसंद है, आजकल के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गीत हैं जो उनको आज के भी अच्छे लगते हैं।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथी के लिए संगीत का जादू ऐसा जो सिर चढ़कर बोलता है, विविध भारती इसमें मेरी सबसे प्रिय और सहयोगी रही है उन्हें। और एक और साथी कहते हैं कि संगीत का जादू तो मेरे सिर चढ़कर बोलता है, ऐसा मेरे घर के लोगों का कहना है। सच भी यही है, मैं खुश रहती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है। हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है, बल्कि जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
1: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में घुला है संगीत, झूमते वृक्षों में, बहते दरिया में है संगीत, भंवरे की गुंजन में है संगीत, मंदिर की बजती घंटियों में है संगीत, गौरी की बजती पायल खनकती चूड़ियों में है संगीत, आसमां से बरसती बूंदों में है संगीत, पक्षियों के मधुर कलरव में है संगीत। सच में रूह का सुकून है ये संगीत।
0: वाह, क्या बात हमारे साथियों ने कही है। तो इन संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है, पर क्यों ना इस वक्त एक संगीत
1: सुनना चाहिए।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: और मन झूमने लगता है आरती जी जब संगीत की बात हो। हमारे एक साथी लिख रहे कि संगीत एक ऐसी अलौकिक कला है जो बिना किसी भाषा और सीमा के सीधे दिल से जुड़ती है। ये सिर्फ सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है।
4: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जब भी अपने बता रही अपना एक्सपीरियंस कि जब भी मेरे पतिदेव से जब मैं नाराज होती हूँ या गुस्सा होती हूँ तो वो मुझे गीत गाकर मनाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम से खिलखिला उठती हूँ। भाई क्या बात है।
3: और हमारे एक साथी कह रहे कि संगीत एक ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देता है। इसकी मधुर धुने

0: कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं तो कभी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर देती हैं। संगीत में मन को सुकून देने, थकान मिटाने और उदास दिल को संभालने की अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है तो कोई गीत किसी अपने की याद दिला देता है। सुर, ताल और शब्द जब मिलते हैं तो भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया बन जाती है। शायद इसलिए संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यही संगीत का असली जादू है जो दिल से निकल कर सीधे दिल तक पहुंचता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि मैं तो लोक गीतों की भी बहुत शौकीन हूँ और प्रादेशिक हो या किसी भाषा को उनको लोकगीत बहुत पसंद है। तो गीत वो तो कोई भी हो सकता है, लोकगीत हो या किसी भाषा को, संगीत तो संगीत है फिर। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शब्द खामोश हो जाते हैं वहां संगीत दिल की भाषा बनकर बोलता है।
0: तो हमारे कई साथियों ने से एक ही तरह की बातें लिखी, क्योंकि संगीत से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से हम सबकी एक ही है। हमारे कह रहे हैं कि सुर ना सजे का गांव में एक साथी ने लिखा है, सुर के बिना जीवन सूना, संगीत का जादू वो अदृश्य शक्ति और प्रभाव है जो बिना किसी भाषा की सीमा के सीधे मन और आत्मा को छू लेता है। ये भावनाओं को जगाने, थकान मिटाने और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। संगीत हमारी गहन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें कई बार साधारण शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। तनाव भागदौड़ के बीच संगीत सुनने से मन को असीम शांति और ताजगी मिलती है। पुराना संगीत सुनते ही इंसान पल भर में अपनी पुरानी यादों और बीते हुए पलों में पहुंच जाता है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर संस्कृति और देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यहाँ आरती जी एक बात कहना जरूरी है कि भाई संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, पर ऐसा नहीं हो कि हम जब सड़क पे जा रहे हैं तो संगीत कानों में हमने लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और हमने सोचा कि चलो सुनते सुनते ही जाएंगे आज हम, और उस वक्त संगीत आपको अगर कहीं किसी दूसरी दुनिया में या किसी दूसरी यादों में आपको खोने के लिए मजबूर कर देगा तो सड़क नहीं, पर नहीं, आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी, ये भी कोई भी चीज सावधानी के साथ अगर करी जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो सड़क पे चल रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप संगीत को थोड़ा देर के रोक दें, तो वो आप जब कहीं बैठे हैं या कहीं आप आराम से अपने घर में या इस तरह से कभी हैं तो आप वो तब सुनिए कहीं। लेकिन बाहर जाते समय या रेलवे स्टेशन में, कई लोग ट्रैक पे जब चलते हैं है ना, ट्रेन की वो पार कर रहे होते हैं रेल लाइन के, तो वहां पे भी आप ये सब मत लगाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है।
0: और अगर आप सार्वजनिक स्थान पर हैं और सफर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने एकदम जोर से जो लगा देते हैं ना संगीत की भजन, आप भजन भी सुन रहे हो, चाहे कोई बहुत ही अच्छा संगीत भी आप सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी और को भी वो संगीत पसंद आ रहा हो। और तेज आवाज में जब संगीत चलाया जाता है तो कभी कभी जो उसकी जो खूबसूरती है वो खो जाती है, तो वो भी आपको उससे भी बचना चाहिए।
1: और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को भी हो सकता है, किसी को खराब या किसी को परेशानी हो रही हो, कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो सकती है, तो संगीत को उतना ही सुनिए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो।
0: तो संगीत को जो मधुरता उसकी है, उसकी मधुरता बनी रहे, बस इसका ध्यान रखना चाहिए,
1: जैसे लड़ाई झगड़े ना हो। और दूसरी चीज है कि आप, क्योंकि आप बाहर लगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप तेज आवाज में सुन रहे हैं तो हो सकता है दुर्घटना का कारण बन जाए, कोई सामने वाले को, किसी को परेशानी हो जाए, तो आप चीजों को ध्यान में रखते हुए आप संगीत को सुनिए। और एक हमारे साथी है जो लिख रहे हैं कि संगीत केवल सात सुरों का संगम नहीं है बल्कि आत्मा की भाषा है जो बिना किसी शब्दों के सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने भी।
0: बिल्कुल, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं बिल्कुल मिल रही है आपस में, क्योंकि एक तरह से संगीत के लिए अगर कहा जाए तो कुछ यही बातें हम कह सकते हैं जैसे भावनाएं हमारे साथियों ने भेजी हैं। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर, मतलब हम दोनों कहने का ये अर्थ है कि हम सब मिलकर एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, गीत सुनते हैं संगीत के समय।

0: तो आरती जी ये बातें तो हो गई, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो तो हमने की नहीं।
1: कौन सी जरूरी बात नहीं की हमने?
0: इतने सस्पेंस आपने ले आया, लेकिन वृद्धजनों की देखभाल के उपयोगी टिप्स जो हमें देने थे और हमारे साथियों ने ढेर सारे कमेंट्स के जरिए
1: उसी पे आ रहे हैं हम लोग, उसी पे तो आ रहे हैं अब, और क्योंकि हमारे साथियों ने कितना सारा तो लिख के भेजा है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, तो हम ले लेते हैं अपने साथी का पहला कमेंट जो लिखते हैं कि सभी को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वैसे देखा जाए तो इन्हें स्वस्थ और हर हाल में खुश रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, पर आजकल के जो युवा वयस्क हैं वे तो समझदार हैं पर इन्हें शायद और जागरूक होने की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान और हर तरह से उनका ख्याल रखने की जरूरत है। एक तरह से नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, उनके पास बहुत सारे अनुभव तो होते ही हैं।
0: और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घरों में कहा जाता है बुजुर्ग हमारे दरवाजे की शोभा होते हैं, तो उन्हें अपनी शोभा बनाएं, घर के कोने में पड़े हुए शोपीस नहीं बनाएं। और एक और साथी कह रहे हैं कि आज का दिन बुजुर्गों की देखभाल और उनकी देखभाल की जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो उन्होंने इसकी हमें बधाई दी है।
1: अच्छा, और साथ ही हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि मेरे मम्मी जो 83 वर्ष की आयु की हैं वो मेरे साथ रहती हैं और वो वॉकर से चलती हैं और उनको मतलब खाने में परेशानी होती है क्योंकि उनके दांत में भी दांत भी नहीं है, तो लिखते हैं कि मेरी वाइफ उनको सब खाना क्रश करके मतलब पीस के देती हैं, उनको ब्रश स्नान जैसे सारे कामों में हेल्प करते हैं वो, और दवाई वगैरह सब अच्छे से देते हैं, ये सब चीज़ें लिखी है कि पूरी चीज़ें सब काम करते हैं उनका। उनके पास सादा कीपैड का फ़ोन है, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो मैंने अखबार लेना और टीवी से केबल और मतलब उनको कनेक्शन चालू करवा दिया ताकि उनका टाइम पास हो और दुनियादारी से वो अपडेट रहें, तो उनसे वो बात करते हैं जब शाम को अपने जॉब से आते हैं तो वो बात भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है अपने साथ में अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, खाना पीना, यही चीजें हैं बस देखभाल के लिए, और कुछ आपको नहीं करना होता है कुछ ऐसा।
0: हमारे साथी वही कह रहे हैं कि बुजुर्ग होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि ये जीवन का एक सम्मानित और सुंदर पड़ाव है जिसपे अनुभव की परिपक्वता और गरिमा होती है। बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। वे हमारे समाज की अनमोल धरोहर है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से परिवार और समाज को सींचा है। हर उम्र की एक गरिमा होती है जिसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करके खुशी से अपना कर जीना चाहिए।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि वृद्धजनों की देखभाल की बात मैं क्या करूं जब मैं खुद 75 पार कर चुका हूं और घर में तो सभी दादा कहते ही हैं। अब विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़े हमारे सभी साथी भी दादा कहकर पुकारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के सदस्य सभी मेरी अच्छी देखभाल रखते ही हैं, बाकी मैं खुद अपनी देखभाल रखता हूँ। रोज सुबह विविध भारती जागो सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉकिंग करने जाता हूँ और रात ढलती जाए रात सुनते हुए शुभ रात्रि हो जाती है अभी, और अब मैं अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ। तो अपनी झपकी से उन्होंने देखिए झपकी भी अपनी तोड़ी और हमारे लिए लिखा भी उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हमारे साथी ने लिखा है कि वृद्धजनों की देखभाल उनके शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति और भावनात्मक जुड़ाव का ध्यान रखकर पूरी गरिमा और स्नेह के साथ करनी चाहिए। बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए मुख्य बिंदु उन्होंने बताया कि रक्तचाप मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां अगर हों तो समय समय पर जांच कराएं, डॉक्टर जो निर्देश दें उसके अनुसार उन्हें दवाई दें, भोजन में प्रोटीन विटामिन डी कैल्शियम ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें, पानी की कमी से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहे, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्हें अकेला न रहने दे। कुछ कमियों के बावजूद परिवार में एक सहारे के साथ बहुत खुश रहते हैं हमारे जो वृद्ध जन होते हैं, तो उन्हें बहुत लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि प्यार और देखभाल सम्मान की जरूरत होती
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल, वो सम्मान आप प्यार देते हैं तो बस वो देखभाल हो गई, इससे ज्यादा बड़ी देखभाल तो और क्या होगी जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा गीत सुन लें।

0: तो बहुत शुक्रिया हम किस लिए कह सकते हैं कि हमारे साथी चाय को पसंद करे, कॉफी को नहीं।
1: वैसे आज कॉफी दिवस है लेकिन हाँ। चाय ने बाजी मार ली है।
0: कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत गया। आप आपकी चाय जीत गई तो कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत
1: आलू भी जीता है।
0: और हमारे एक साथी लिख रहे कि चाय मुझे बहुत पसंद है, सुबह ब्लैक कॉफी पीता हूँ। देखो कॉफी पी रहे हैं वो, और कह रहे नाश्ते के बाद दूध वाली चाय। इतनी चाय की बात हो रही है, अभी कोई आया तो चाय तो मुझे बनाना ही है, कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ खासकर शाम को, तो रात को मेरी नींद गायब हो जाती है। मतलब मिली जुली सरकार चल रही है, इन्हें कॉफी और चाय दोनों पसंद आ रही है।
1: तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, आइस टी भी पसंद है इनको, और ये जो भी चीजें बनती हैं घर में खा लेते हैं। इन्होंने बोला ये टिंडे भी खा लेते हैं, इन्होंने सब्जियों के बारे में बताया कि ये सब्जियां भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो भरवा टिंडे, भरवा शिमला में चौसच बोलूं तो करेले की सब्जी भी फेवरेट है। क्या बात है सच में।

0: हमारी टीम के लग रहे हैं। और हमारे एक साथी ने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है, जब भी कभी यार दोस्त मिलते हैं तो चाय की चुस्की तो होती है, बैठे बैठे गप्पे हो जाती है, और इस बीच कुछ खाने को हो जाए तो कचौड़ी या दाल मंगोड़े की बात ही क्या, मतलब प्रोग्राम के बीच में अगर खाने की बातें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें जाके चाय पकौड़ी कुछ खाना चाहिए। अब हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि घड़ी भी आज हमारा साथ दे रही है, तो घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि हम जाएं चाय पकौड़े खाएं, कॉफी भी पी सकते हैं,
1: आज तो कॉफी पियेंगे क्योंकि आज कॉफी दिवस है, तो कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी हमें।
0: तो ये भी बताते चले कि कॉफी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 2015 में पहली बार मिलान में इटली में इसे मनाना शुरू किया था उन्होंने, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लाखों किसानों और श्रमिकों का समर्थन करना था जिनकी आजीविका इस फसल पर निर्भर करती है, और फिलहाल ये निर्भर करता है कि समय तो कह रहा है कि बिल्कुल अब आप अलविदा कह दें, तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सबसे पहले तो ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 0222867 0288, यानी 0226702688। दूसरा टेलीफोन नंबर है 0224002466 2, यानी 0224002462। ये दोनों बड़े काम के नंबर हैं, क्योंकि इन्हें जब आप सोमवार को दिन में 11 बजे डायल करते हैं तो हम विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से कहते हैं हेलो फरमाइश, और फिर आपसे करते हैं बातें और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो शुरू करते हैं आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सिलसिला ये बताते हुए कि रिकॉर्डिंग सोमवार को होती है दिन में 11 बजे से। आज का पहला कॉल ये रहा। हेलो फरमाइश
1: जी। यूनुस जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, रामनगर गुना मध्य प्रदेश से।
0: नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों में आपको अच्छे लगे हैं?
1: इन दिनों में अच्छे लगे हैं सबसे पहले तो यही है हेलो फरमाइश, और आपने फिर

0: से शुरू किया है, सखी सहेली का जो हेलो सहेली कार्यक्रम वो भी लाजवाब है, पसंद आ रहा है, और जो पत्रों पर आधारित मन चाहे गीत फिर से शुरू हुआ उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम तो विविध भारती में बहुत सारे हैं और ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है विविध भारती।
1: विविध भारती अब अपनी यात्रा के 69 बरस पूरे करते हुए 70वें बरस में प्रवेश कर रही है 3 अक्टूबर को, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बस यही कहना चाहता हूँ कि विविध भारती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और विविध भारती से सीखकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं वो मनोरंजन तो उनमें होता ही है लेकिन ज्ञान से भरपूर होते हैं।
1: जी बहुत शुक्रिया। बताएं गुना शहर की क्या स्थिति है, बारिश वारिश खत्म हुई है?
0: इस बार बारिश तो कम हुई है सर, लेकिन हाँ फसल तो अब पककर तैयार हो गई है और कट रही है, कहीं कहीं कटने को भी तैयार है, और मक्का की फसल ज्यादातर होती है। पहले सोयाबीन की फसल होती थी लेकिन क्या है कि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो फिर किसान भाई मक्का की फसल लगा रहे।
1: अच्छा, अब बताइए आप कौन सी फरमाइश लेकर आज हाजिर हैं?
0: जी फरमाइश है मुकेश और लता जी की आवाज में शोर फिल्म का गाना है एक प्यार का नगमा है मोजों की रवानी है।
1: जिंदगी का दर्शन छिपा हुआ है इस गाने में, संतोष आनंद के बोल हैं ये। चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार यूनुस जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह उत्तम जी, उत्तम हुआ कि आपका कॉल लग गया।
1: जी सर, और पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है सर।
0: जी जी जी, मुझे बताएं कि ये जो गंगा शहर है ये कहाँ है और ये गंगानगर से कितना अलग है?
1: ये गंगानगर तो अलग जिला है सर।
0: अच्छा,
1: और अपना जो गंगा शहर है ना, ये बीकानेर का ही उपनगर है, बीकानेर का ही एरिया है गंगा शहर।
0: अच्छा क्या बात है, और बीकानेर तो भाई बहुत ही अलबेला शहर है।
1: बिल्कुल सर, हमारे शहर के खाने पीने की चीजें बहुत फेमस हैं।
0: बिल्कुल बाकायदा, और वहाँ की अपनी एक संस्कृति है।
1: बिल्कुल है, पुराना शहर है सर।
0: जी
1: पकौड़ी, खाने पीने की सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा फेमस है सर हमारे यहाँ की, नमकीन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी इतनी सारी बीकानेर की बातें हो रही थी तो एक कोई लोकगीत नहीं सुनाएंगे तो फिर ये कॉल तो सुना सुना हो जाएगा।
1: जी सर, मेरी आवाज तो वैसे खास नहीं है।
0: फिर भी कोशिश कर लीजिए।
1: बन्ना रे भागा में झूला गालिया।
0: अच्छा बहुत ही मशहूर है ये ना। हाँ बिल्कुल
1: जी, राजस्थानी सॉन्ग बहुत फेमस है सर यहाँ के।
0: बिल्कुल बहुत ज्यादा, और वहाँ के कई गायक जो हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं।
1: बिल्कुल हुए हैं सर।
0: आप मुझे बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप?
1: तोबा कैसे है नादान घुंगरू पायल के।
0: ओहो क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश की है आपने। तो चलिए बातों का सिलसिला खत्म करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना बीकानेर में।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, हम नारायण कुमार पटेल बजाज धमकरिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, क्या बात है। हाँ। बताइए, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना हमको जो है हीर राझा का

0: खेत वेत सब जगह चलता है विविध भारती फिर।
1: हाँ सर एकदम क्लियर, चाहे जहाँ जाओ। इस समय हम धान के खेत में टहल रहे हैं, धान फूट गया है।
0: अच्छा,
1: आंधी तूफान आया जिससे कुछ धान गिर गए हैं, नुकसान हो गया है।
0: जी जी समझ रहे हैं, मौसम खराब हो गया ना अचानक इसलिए। अच्छा हमें बताएं, विविध भारती इतने ध्यान से इतने सालों से आप सुनते रहे, तो वक्त के साथ जो बदलाव आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी बहुत बढ़िया बदलाव आया, क्योंकि हम उस जमाना जानते हैं जब रेडियो शॉर्ट वेव पे आता था, कुछ आवाजें क्लियर नहीं आती थी, सरसरा के आवाज जो है धीमी हो जाती थी, तेज होती थी। फिर उसके बाद 2:30 बजे तक वो शॉर्ट वेव पे प्रसारण बंद रहता था, FM पे चलता था हमारे यहाँ।
0: जी
1: फिर वो FM जो है दो बैंड के रेडियो होते थे, शॉर्ट वेव मीडियम वेव, उसमें एक प्लेट 100 रुपए तब लगती, तब 40 रुपए मजदूरी थी, तो 100 रुपए की प्लेट लगा दिया करते थे, तो वो स्विच रहता था, उसको स्विच पे ऑन कर दो एरियल लगा रहता था, ऊपर कर दो तो साफ क्लियर FM यहाँ हमारे यहाँ प्रयागराज 14.3 MHz पे सुनाई देता था। फिर उसके बाद एक बॉक्स आने लगा, उसमें स्पीकर और FM से बिजली जो बिजली बचता था वो कोई गोमती में दुकान में कमरे में लगाए रखते थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी कमरे में लगाए, तो हम रेडियो सुनते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कक्षा 2 में थे तब से यानी सुन रहे हैं, जब से यानी हमको संभाला है हमने।
0: अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमारे आते हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको ज्यादा पसंद रहे हैं?
1: जी आज के फनकार हो गया, हेलो फरमाइश, उसके बाद जो है हमारे मेहमान, सेहतनामा हो गया है, एक सखी सहेली आता, अब तो मन चाहे गीत भी शुरू हो गया है जिसमें हम पत्र डाल भी चुके हैं।
0: अच्छा बढ़िया।
1: हाँ जी, और एक आपका जिज्ञासा जो था वो तो एकदम समझो मजा अच्छा। आ जाता है सुनकर।
0: अरे बहुत शुक्रिया, तो फिर अब हमको समझ में आ गया कि आप ठीक ठाक हैं, मतलब सिर्फ गाना ही था, ऐसा कोई मन की हालत ऐसी नहीं है?
1: गाना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हम अपने आप में खुश रहते हैं।
0: हाँ बस ऐसे जोश में रहना है ना, भले गाना अपन ये वाला सुन लेंगे, ठीक है, सुनाते हैं आपको ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन काम की तो है ना
1: सर।
0: सुनिए।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नाम विशाल यादव है और मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा विशाल जी, सब ठीक है?
1: हाँ बढ़िया सर।
0: और इंदौर की क्या हालचाल है?
1: इंदौर के बढ़िया, मौसम अभी खुशनुमा है और थोड़ी बारिश अभी बंद है।
0: अच्छा, हमने तो सुना था खूब बारिश हुई पिछले दिनों इंदौर में।
1: हाँ पिछले महीनों में हुई थी, पर अब नहीं हो रही है, थोड़ी बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम है इधर।
0: अच्छा अच्छा, और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: सर मैं रेडीमेड का सिले का काम करता हूँ इंदौर में, और बढ़िया चल रहा है।
0: और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल सर, आपके तो खास करके।
0: अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है?
1: मेरी फेवरेट सिंगर लता जी है और आशा जी।
0: क्या बात है, तो उनके गानों की फरमाइशें आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम में करते रहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: और लता जी का तो जन्म ही इंदौर में हुआ था भाई?
1: हाँ इंदौर में हुआ था, हम जानते हैं ना, उनके सराफ में लोग गाने सुनते रहते हैं और जैसे कुछ उनका कार्यक्रम वगैरह भी आते हैं।
0: हाँ
1: वो भी सुनते हैं।
0: इंदौर का जो फूड कल्चर है वो तो बड़ा कमाल है, तो इन दिनों जो है वो कौन कौन से व्यंजनों का मजा लिया जा रहा है?
1: सर हमारे यहाँ पे सराफा फेमस है, तो अभी जैसे अभी मौसम के हिसाब से भुट्टे का केस वगैरह अच्छा चलता है।
0: और वो कचौड़ी?
1: बिल्कुल, यहाँ पे कचौड़ी और समोसे ये चीज तो फेमस ही है सर यहाँ पर।
0: बिल्कुल, जैसे इंदौर को याद करो तो अपना एक फूड कल्चर याद आता है ना।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ खाने पीने की बहुत फेमस चीजें हैं, यहाँ पर
0: कोई एंड नहीं है खाने पीने का।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो ये बारिश के मौसम में दाल बाफले के मजे लिए जा रहे हैं?
1: हाँ लिए जा रहे हैं सर, ये भी हमारे सराफे में बहुत फेमस है।
0: अच्छा, तो इंदौर वासी तो निकल पड़ते होंगे सराफे की तरफ जब मन चाहे?
1: हाँ बिल्कुल, रात को 4 बजे तक चालू रहता है सर ये।
0: बहुत सही।
1: ये गाना सुनना सर मुझे।
0: कौन सा?
1: राजा और रंग की मूवी का, मेरा नाम है चमेली।
0: ओके, आवाज में क्या बात है। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं राजा और रंग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, मैं आरिफ खान मंसूरी बोल रहा था, भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: आरिफ खान मंसूरी साहब, आपकी बहुत फरमाइशें आती हैं।
1: सर आपसे मेरी 15 साल पहले बात हुई थी सर।
0: अरे नहीं, यहाँ नहीं आती हैं, वो फेसबुक पे आती हैं, चिट्ठियों में आती हैं।
1: बाकी तो सब में आती हैं, और मैंने आपसे बहुत साल पहले बात हुई थी।
0: अच्छा ऐसा है। हाँ सर, भोपाल के किस इलाके में हैं आप?
1: सर भोपाल के कोलार इलाके में सर हम।
0: अच्छा अच्छा, बताइए क्या हालचाल है आपके?
1: सर बढ़िया है, मैं टेलर हूँ
0: जी,
1: और आरती से मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी,
1: और 2005 और 2010 के बीच में मैंने मुंबई में 100-200 फोन लगाए होंगे सर कम से कम।
0: अरे बाप रे, ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई।
1: और जितने भी आगे थे उस टाइम के, कमल शर्मा जी हो, शहनाज जी हो, चाहे ममता जी हो, जितने भी आरजे थे सबसे मेरी बात हो चुकी थी।
0: और मेरे से?
1: और सर आपसे 2-3 बार आपसे बात हुई थी सर मेरी।
0: अच्छा
1: सर, क्या है कि मैं जैसे आपसे आज मेरी बात हो रही है, तो मैं डायरी में नोट होकर रख लेता हूँ, तो मेरे पास वो 2005 से और 2010 तक मैंने फोन लगाए, वो डायरी में मेरे पास सब नोट कर लिखा हुआ है सर।
0: अच्छा बहुत बढ़िया है। आप बताएं कि एक पुराना भोपाल हुआ करता था, एक पूरा कल्चर भोपाल का 30-40 साल पहले जिस तरह का था, क्या वो आज खो गया है?
1: सर अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है सर, पुराने भोपाल भी अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है, नए भोपाल भी जो बन गया है, और ये कोलार इलाका भी पहले भोपाल में नहीं आता था, अभी 5 साल से आ रहा है।
0: नहीं लेकिन जो तहजीब थी भोपाल की, जो पुराने घर,
1: सर तहजीब तो सर भोपाल की वही रहेगी, क्योंकि जो बुजुर्गों सीखते हैं वो बच्चे करते हैं, अमल में लाते हैं।
0: बिल्कुल, एक पूरा शायरी का मिजाज और वो बात करने का अपना एक तरीका, भोपाल का पान।
1: जी सर, जी सर,
0: वो जलवे कायम है।
1: हाँ सर जलवे कायम है, वो पान की गुमटियाँ भी कायम है, और नमक वाली चाय भी कायम है, और वो बिल्कुल रौनक भी कायम है, मगर वो ज्यादातर पुराने भोपाल में पाई जाती है सर। वो
0: बिल्कुल, वो क्या कहते थे, तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैयां।
1: जी जी सर,
0: क्या बात है
1: सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है मेरे हम सफर, और गाने के बोले किसी राह में किसी मोड़ पर ये चलना देना ये छोड़कर।
0: कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मुकेश की आवाज़। आपके लिए ये गाना कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मेरे हम सफर।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, मैं गांव लिहे डिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सवान बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, फोन कॉल नहीं लग रहा था, बहुत परेशान हो रहा था सर। अब जैसा शुरुआत हुआ था उसके बाद फोन ही नहीं लगा था मेरा।
0: बताइए, इतने दिनों बाद फोन लगाए, तो बताइए आपके इलाके की क्या हालचाल है भाई?
1: सर इलाके की हालचाल तो बहुत गर्मी है और बहुत धूप है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, पर खेत में फसल को पानी भर रहा है, कपास को।
0: जी, कुछ जगहों पर बहुत बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, क्या माजरा है ये?
1: हाँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ कि मतलब जगह जगह रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ना, तो कुछ जगह बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश क्यों नहीं हो रही सर?
0: हाँ, देखिए ना, मौसम किस तरह से बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना।
1: सही बात है सर, परेशान हो रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे खेत में सब मोटर से पानी चला रहे हैं और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है।
0: जी जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सर विविध भारती के कार्यक्रम मुझे सबसे ज्यादा हेलो फरमाइश और सखी सहेली, हेलो सहेली और जो पत्र आधारित के कार्यक्रम शुरू हुआ ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा हमारा फेवरेट प्रोग्राम है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, सखी सहेली तो महिलाओं का कार्यक्रम है,
1: तो भी अच्छा लगता है सर सुनने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश?
1: गाने की फरमाइश सर, फिल्म का नाम है सरगम और गाने का बोल है पर्वत के उस पार।
0: चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर, यूनुस खान जी।
0: नमस्ते भैया,
1: मेरा नाम रामेश्वर कुमार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: अरे क्या बात है, छतरपुर से बोल रहे, क्या हालचाल भैया?
1: बढ़िया है सर, अभी एक्सीडेंट हो गया था, 2 दिन वहाँ पड़े रहे बिस्तर में।
0: क्या हो गया एक्सीडेंट, कैसे हो गया?
1: सर बस टकरा गई थी उससे, बस और उसका हो गया ट्रक का।
0: तो आप काय में थे, बस में कि ट्रक में?
1: बस में थे सर, डिपो में, यहाँ पे हमीरपुर में।
0: ए दद्दा रेसो, सब ठीक ठाक है, सलामती है?
1: सर फट गया था सर, अभी 2-3 महीने से हाथ फ्रैक्चर है, अभी बिस्तर में पड़े हैं सर।
0: ए दद्दा रे, तो बहुत ही बुरा हुआ। आजकल लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ ठीक से नहीं चला रहे मालक?
1: हाँ हाँ सर, ऐसा भी है।
0: है ना, हम सब लोगों से जे कहेंगे कि सड़क पे निकलें तो थोड़ी अच्छे से गाड़ी चलाएं। और का
1: जी सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी।
0: दूसरी बार, हमें तो याद नहीं है
1: सर। अभी हुई थी ना, जब आप पूछ रहे थे अमिया लग गई आम में कि नहीं लगी।
0: अरे हो अमिया, गर्मी के मौसम में बात हुई?
1: हाँ जी सर, हुई थी।
0: अच्छा जी, बताइए कि छतरपुर के क्या हालचाल, आधा बारिश हो गई?
1: हाँ हाँ सर।
0: अच्छा अच्छा
1: सर, वो खेत हमारे तालाब में है ना, इसलिए डूब जाते हैं, ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक हो गई।
0: अच्छा, तो का उगाते हैं अपन इन दिनों में खेत में, का चल रहा हो?
1: सर सोयाबीन, उड़दा और मूंग।
0: अच्छा, उड़दा भी उग जाती है?
1: जी सर।
0: अच्छा, जो हमारे श्रोता बुंदेली नहीं जाना तो उनको बता दें, उड़दा माने उड़द की दाल।
1: जी सर, उड़द।
0: हाँ, नहीं तो उड़दा लोग समझ ही नहीं पाए हैं।
1: जी सर, आप तो बुंदेलखंडी जानते हैं अच्छे से।
0: नहीं, थोड़ी थोड़ी जानते हैं भैया, हम सोई बुंदेलखंडी आए।
1: सर आप बताते रहते हैं ना, भोपाल में सागर में रहे हैं तो आप तो जानते ही होंगे।
0: हाँ, थोड़ी थोड़ी, हाँ अपन बुंदेलखंडी आए थोड़े थोड़े।
1: जी सर।
0: सो आज कौन से गाने की फरमाइश आ रही है ये बताओ।
1: सर हम वो वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
0: चलिए पूरी कर रहे आपकी फरमाइश, छतरपुर में आपके लाने सुनवा रहे जे गाना।
2: हमें काले

चंदाना, ये 16 साल तंदाना है तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे

ताली ताक झुमी ताक ताली ताक झुमी ताक झाला आंबे ताक झुगी ताक ताली गेने ताक नाक ताक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झम तारी ता जग तारी ता झन जाने को गुजारी दाबो तारी गेटे ताक तारी ता जग तारी ता झन जाने को गुजारी दाबो तारी गेटे झम तारी जग तारी ताक नाक नाक

रंगी की पाका पाता चिमटा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, ग्राम बिछिया जिला विदिशा से कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ सर।
0: कैलाश जी कैसे हैं?
1: बस सर एकदम मस्त है सर। यूनुस जी आपकी आवाज तो हमारे दिलों में बसी है, बिल्कुल आपकी आवाज सुनते हैं तो समझ जाते हैं यूनुस जी आ गए हमारे।
0: अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने श्रोता हैं आप विविध भारती के।
1: बिल्कुल सर, आपने सही पहचाना, कम से कम 30 साल हो चुके हैं विविध भारती से जुड़े जुड़े।
0: इन 30 सालों में विविध भारती कितनी बदली है कैलाश जी?
1: प्रोग्राम तो सर एक सुबह का एक लाजवाब है सर विविध भारती के, और लगातार विविध भारती हम सुनते हैं, एकदम देश की सुरी धड़कन विविध भारती कहते हैं, वो बिल्कुल सच है बात।
0: और देखिए 3 अक्टूबर को विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश करेगी, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप?
1: बस सर इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बस सर बस सभी लोग यूं ही विविध भारती सुनते रहें, मनोरंजन तो है ही और साथ में ज्ञान भी मिलता है सर, इससे विविध भारती से बहुत अच्छा लगता है साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं कैलाश जी?
1: जी सर आज सुनना चाहेंगे फिल्म मन का है नशा, ये प्यार का नशा है, क्योंकि विविध भारती का नशा जो है ना बहुत है हमको, और कई वर्षों से सुनते चले आ रहा है और अच्छा लगता है ये।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेड़ टांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: वसीम भाई कैसे हैं?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ईश्वर की कृपा है और आपकी दुआएं सर।
0: आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर है ना, इससे बहुत सारी चीजें याद आ गई।
1: जी सर,
0: फिल्मों में पहले दिखाते थे रामपुरी।
1: जी, रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता सर ये। हाँ। और ये इंडस्ट्रियल एरिया है रामपुर।
0: अच्छा,
1: मतलब सर यहाँ पे धानों की खेती, गन्ना, गेहूँ होता सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही पुराना इलाका है, वहाँ की तहजीब बहुत अलग है।
1: जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल साइंस से।
0: अच्छा,
1: और जब जब समय मिलता है सर आपके प्रोग्राम सुनते हैं। विविध भारती से सर बहुत पुराना नाता है और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे हेलो फरमाइश में बात हो रही है, तो अपनी खुशी सर मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रही है सर मुझे।
0: आपकी आवाज में आपकी खुशी छलक रही है।
1: जी सर, और आपकी आवाज सुन लेते हैं तो सर आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम अच्छे से पेश करते हैं सर, बहुत खुशी होती है सर आपकी आवाज सुन के सर, बस कुछ बयां नहीं कर सकते कि इतनी खुशी महसूस हो रही है सर आज।
0: शुक्रिया भाई, बताएं किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: सर मूवी का नाम है अंदाज, और उसमें एक सॉन्ग है किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, इसके बोले।
0: जी बिल्कुल।
1: और जी सर आपके लिए दो लाइनें
0: हैं। इरशाद
1: कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं सर आपकी जिंदगी के लिए।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये गाना रामपुर में।

0: हेलो फरमाइश।
1: बहुत दिनों से बात करने चाह रहा हूँ तो आपसे आज बात हो रही है सर
0: जी। नाम क्या है आपका?
1: मैं इस्माइल पात्रूर शरीफ तालुका मजलेगांव जिला बीड़ से बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल से।
0: और बताएं, विविध भारती के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लग रहे सर, सब गाने सुनता हूँ सर मैं आपके कार्यक्रम के।
0: जी जी, बहुत बहुत
1: सर। और शेर कहना चाहता हूँ सर मैं।
0: इरशाद।
1: फूलों में हंसी गुलाब है, फूलों में हंसी गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। अगर हमसे कोई पूछे विविध भारती के बारे में तो हम कहेंगे वो बहुत बहुत लाजवाब है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कातिलों का कातिल सर।
0: अरे बाप रे, कातिलों का कातिल, कौन सा गाना?
1: ये अल्लाह को खबर, ये मौला को खबर, बहुत अच्छा गाना है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खेटांडे से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ सर।
1: जी बताइए, कैसे हैं आप?
0: सर एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर आप कैसे हो?
1: बिल्कुल अच्छे हैं। विविध भारती का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए कौन सा है आपकी नजर में?
0: सर मेरी नजर में सबसे अच्छा प्रोग्राम तो देखिए सर फोन इन प्रोग्राम है ये।
1: अच्छा,
0: इसके अलावा जो आप मैसेज के आधार पर जो सॉन्ग सुनवाते हैं वो, और रात में जो भूले बिस्तर गीत, और ये पिटारा के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं सर,
1: हाँ जी,
0: ये सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर।
1: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह की बात आपने कही, विविध भारती 3 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मना रहा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: सर देखिए विविध भारती हमारे दिलों का राज करता चला आ रहा है इस जमाने से
1: जी,
0: और सर यही ऐसी जो प्रोग्राम चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहें, और हम इससे जुड़े रहें, हम सुनते रहें, आप हमारा मनोरंजन करते रहें सर, इससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं।
1: आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
0: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, और गाने के बोले कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
1: वाह भाई वाह,
0: के गाने के बोले सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही गाने के बोल बताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी हो रही है आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। कितना

0: कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग होती है सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02228670288, दूसरा नंबर है 0224002466 यानी 40024662। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से। और अब ये इल्तिजा कि जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे ये निवेदन है कि अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि हमारे नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ।
3: ठीक 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं मराठी में समाचार आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

यादें इतनी आसानी से कहां जाती हैं? कभी उसकी कही हुई कोई बात अचानक कानों में पड़ती है, कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए पुराने दिनों की आहट मिलती है। दिल एक पल को सोचता है, शायद वह लौट आए, शायद बीती हुई बातों का कोई अर्थ अब भी बाकी हो, शायद इसी कारण आज भी उसकी आंखें किसी लौटते हुए कदम की आहट नहीं बल्कि उस बीते हुए प्रेम की कोई आखिरी निशानी तलाशती है। हाँ, हर रोज।

रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है तब यादें जागती हैं, वह भी जागती है और अपने बीते हुए प्रेम के साथ थोड़ी देर बैठती है। हाँ, कहते हैं रिश्ते कभी कभी खत्म हो जाते हैं, मगर उनसे निकली हुई धुन बहुत देर तक हमारे भीतर बजती रहती है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इतने वर्षों बाद भी मेरे भीतर तुम्हारे लिए कुछ बचा हुआ है। हाँ, कुछ बचा हुआ है। मैं उसे प्रेम कहूँ, कमजोरी, आदत या कुछ और, मैं आज भी इसका उत्तर नहीं जानती। हाँ, ये सच है, शायद कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, वे बस हमारे साथ उम्र भर चलते रहते हैं।

क्या। कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते, वे बस अपनी आवाज खो देते हैं। दो लोग अलग हो जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, मगर किसी एक के भीतर वो कहानी वहीं ठहर जाती है, उसी मोड़ पर, किसी किताब के खुले पन्ने में, किसी पुराने गीत में, हाँ खिड़की से आती उस हवा में भी। तो यकीनन उसने उसे खो दिया है, लेकिन अपने भीतर उस प्रेम को खोना नहीं चाहती वो। हाँ उस प्रेम को कभी खोना नहीं चाहती वो।

हाँ, अब जो बचा है वो है एक लंबी खामोशी। विरह धीरे धीरे आंसुओं से निकलकर एक मौन स्वीकृति बन गया है। अब किरदार, या यूं कहूं मुख्य किरदार चला गया है मेरी प्रेम कहानी का, और कहानी दिल में वहीं ठहर गई है। शायद प्रेम में सबसे गहरी प्रतीक्षा वही होती है जिसमें इंसान जानता है कि वो नहीं आएगा, फिर भी दरवाजा बंद नहीं करता। हाँ, फिर भी दरवाजा बंद नहीं।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है विजू शाह का और फिल्म का नाम है गुप्त।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच।

0: आज़म मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
1: लीजिए सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है प्रिंस।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

समीर का लिखा गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है बेटा।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है अंदाज।

आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है जंगली। आई आई।

दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार। अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु।

0: हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे।

सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ 65 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है दीवाना मस्ताना।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में, गीत रचना समीर की, संगीत रचना आनंद मिलिंद के, फिल्म का नाम है सुहाग।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।
1: कभी हमने नहीं

हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा, देखो तुमसे अच्छा।

खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा।

0: आएगा देखो तुमसे अच्छा कौन है देखो तुमसे अच्छा।
1: साथियों कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
2: तराने नए पुराने।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन और 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिए संगीत सरिता। शाम 7:00 फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम होगा जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए में सुनिए टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। रात्रि 8:00 हवा महल में आज आप सुनेंगे झलकी अंगारी। 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है महान गीतकार मजरू सुल्तानपुरी पर और रात 10:00 छाया गीत में आज सुनिए नेहा अगरकर को। कल सुबह 6:05 पर वंदनवार और चिंतन, 6:35 पर श्री राम चरित मानस गान का 229वां भाग सुनिएगा। संगीत सरिता इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनिए शताब्दी की भक्ति रचनाएं। इस श्रृंखला का दूसरा भाग कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने, संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का, प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7:00 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 पर सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष श्रृंखला का 48वां भाग। लेखक हैं मिलिंद सबनिस, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दोपहर 2:00 से। सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री आशा पारेख पर, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। कल दिन में 10:00 पिटारा के अंतर्गत श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम सुनिए हेलो फरमाइश यूनुस खान के साथ, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। दिन में 11:00 संगीत का कार्यक्रम प्रसारित करेंगे रंग तरंग। 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की तरह कल भी 1:00 हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर, कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे। दिन में 3:00 सखियों का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए हेलो सहेली, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4:00 पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी में सुनिए कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। आलेख और वाचक स्वर है ममता सिंह का, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। शाम 5:00 छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल शाम 7:00 सुनिए फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे अनमोल यादें, जिसमें सुनिए फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से की गई जयंत पात्रीकर की बातचीत का 13वां भाग, प्रस्तुत करता है जुबैर खान।
कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे रूपक महान आत्मा। लेखक और निर्देशक हैं गुरुमीत रामल मीत। रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। कल रात 10 बजे छाया गीत में आप सुनेंगे पूजा को। प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह व शाम 6 बजे, मध्यान्ह 12 बजे, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। कल सुबह और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे झरोका। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत के साथ स्वर हमारे मन को शांति, शीतलता और उल्लास प्रदान करते हैं, और जब इस संगीत में भक्ति रस की चाशनी घुल जाए तो मन भाव विभोर होता है। ऐसी ही भाव विभोर करने वाली एक श्रृंखला संगीत सरिता में सुनते हैं, शताब्दी की भक्ति रचनाएं। इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत जब साधना बन जाए और शब्द आत्मा की आवाज बन जाए तो एक कलाकार सिर्फ गायक और संगीतकार नहीं रहता, बल्कि वो कला और संस्कृति का संवाहक बन जाता है। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने ऐसे ही एक विलक्षण कलाकार को आमंत्रित किया है। वो गुणी कलाकार हैं पद्मश्री शेखर सेन। आप हैं गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, लेखक और निर्देशक, और बेहद विनम्र इंसान। आपकी बातों से जहां ज्ञान की सरिता बहती है, वहीं हास्य और व्यंग्य का चुटीला झरना भी बहता है। शेखर सेन मध्य प्रदेश, जो अब छत्तीसगढ़ है, के रायपुर के संगीत के संस्कार भूमि में पले बढ़े। आपने अपनी माँ डॉक्टर अनीता सेन से और पिता डॉक्टर अरुण कुमार सेन से संगीत की तालीम ली। माता पिता दोनों ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतज्ञ थे। शेखर सेन ने अपनी प्रतिभा से संगीत की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। 200 से ज्यादा संगीत एल्बम के साथ उन्होंने अपनी रचनात्मक यात्रा को आगे बढ़ाया और फिर रंगमंच को अपनी साधना का माध्यम बनाया। उनकी अनूठी पहचान है उनकी एकल नाटक प्रस्तुति, सूर, कबीर, तुलसी, विवेकानंद और भी अनेक प्रस्तुतियां, जहां वे स्वयं अनेक चरित्र और भावों को खास अंदाज में जीवंत कर देते हैं। शेखर सेन ने मीराबाई से लेकर महादेवी वर्मा तक, रसखान, रहीम, बिहारी, सूर, कबीर, तुलसी और भी अनेक कवियों और संतों की रचनाओं को उन्होंने स्वर दिया है। शेखर सेन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और अन्य अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। शेखर सेन जी संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के रूप में भी उन्होंने 4 वर्षों तक काम किया। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, शताब्दी की भक्ति रचनाएं। इस श्रृंखला को सुरीली कड़ियों में पिरोने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं गायक, संगीतकार, गीतकार और अभिनेता पद्मश्री शेखर सेन। शेखर दादा, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपको भी और संगीत सरिता के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम।
1: और अब

0: हमने तबले पर संगत करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है आशीष बिस्वास जी को। श्रोताओं से आपका हम परिचय करा दें। आशीष जी देश विदेश के अनेक संगीतमय कार्यक्रम में अपने तबला संगति से लोगों को लुभाया है, सम्मोहित किया है, और आशीष जी ने श्री अभिजीत बैनर्जी से तबले की तालीम ली है, और जब इनकी उंगलियां तबले पर थिरकती हैं तो हम सब सम्मोहित होकर देखते रहते हैं कि ये बिल्कुल नदी की धारा की तरह बहती है। तो आशीष जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: आप सभी को आशीष बिस्वास का नमस्कार।
2: जब इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की तो हमने सोचा कि क्यों ना एक शताब्दी का पूरा भक्ति संगीत की यात्रा हमारे साथ साथ हमारे श्रोता भी करें, और बहुत सारी चीज़ें जो कहीं पर इतिहास के खानों में छुप के रह गई हैं उनको वहाँ से निकाला जाए, और एक बार फिर से हम उन सभी अपनी अद्भुत रचनाओं को याद करें और उससे और समृद्ध हों। तो सबसे पहले मैं शुरुआत में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 1922
0: जी,
2: महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर जो अब बहुत बड़ा हो गया है, नाशिक। वहाँ पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने एक आश्रम की शुरुआत की, स्थापना की, राम नाम आधार आश्रम
0: जी।
2: और मन में उन्होंने संकल्प लिया उस छोटे से कमरे में कि मैं केवल भगवान राम पर आधारित भजनों की रचना करूँगा
0: जी।
2: उनको कोई भगवत प्रेरणा हुई थी, बड़े संत हृदय व्यक्ति थे, और वहाँ पर उन्होंने उस छोटे से आश्रम में बैठकर बहुत सारी रचनाएं बनाई। मैं आपको कुछ नाम ले रहा हूँ तो आपको एक अनुमान होगा कि क्या क्या अद्भुत रचनाएं नाशिक के उस छोटे से कमरे में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा रची गई।
0: और पंडित जी को हम सब ने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा,
2: बिल्कुल
0: संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्हीं से ली हम सभी श्रोताओं।
2: बिल्कुल, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चलो मन गंगा जमुना तीर
0: जी,
2: मत जा जोगी
0: क्या बात,
2: जानकी नाथ सहाय करें तब, या जो सबसे प्रसिद्ध धुन है जो बाद में गांधी जी ने भी इसको गाया, रघुपति राघव राजा राम,
0: क्या बात है।
2: इन सब रचनाओं की उन्होंने न केवल उनको स्वरबद्ध किया रागों का आधार लेकर, उन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाया, और उस कालखंड में जिस समय माइक नहीं हुआ करता था
0: जी,
2: उस समय उन्होंने 20,000-25,000 लोगों के सामने, कितनी बड़ी आवाज उनकी रही होगी,
0: बिल्कुल
2: उनके सामने वो गाते थे और लोग उनके साथ गाते थे, और ये उनकी संगीत रचनाओं का जादू है कि आज इतने वर्षों के बाद, 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो रचनाएं हमारे डीएनए का अंग बन चुकी हैं
0: जी। बिल्कुल,
2: पहली रचना मैं चाहूंगा कि हम लोग आप विविध भारती के माध्यम से सुनाएं, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया,
0: क्या बात।
2: मैं केवल थोड़ा सा हमारे श्रोताओं की सुविधा के लिए राग का परिचय दे रहा हूँ। राग मिश्र गारा में

0: क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: पलुस्कर जी के ही सुपुत्र डीवी पलुस्कर जी की आवाज में आप ये भजन सुनाएं।
0: पंडित डीवी पलुस्कर के स्वर में ये रचना सुनते हैं और श्रोताओं को भी सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल।

0: शेखर दादा अब बताइए कि जो अभी रचना हमने सुनवाई, इस रचना के बाद अभी हम क्या सुनवाएं?
1: अगली रचना को हम सुने उसके पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी संगीत को प्यार करने वाले श्रोता हैं और जितने भी संगीत के विद्यार्थी हैं
0: जी,
1: उनकी जानकारी में भी ये बात आए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने 1901 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की
0: जी,
1: और आपको आश्चर्य होगा कि लाहौर में की 1901 में
0: जी,
1: और फिर उसका मुख्य केंद्र बना मुंबई में ऑपेरा हाउस में
0: जी,
1: और 1908 में मुंबई के गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना हुई, और इसलिए हम सब मुंबई वासी जो हैं वो ऑपेरा हाउस का जो चौक है उसको पलुस्कर चौक इस नाम से हम जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पंडित जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, पर ये जो रचना मैं चाहता हूँ वो हमारे अंतर मन में इतनी घुली हुई है कि मैं जानता हूँ कि जिस समय ये रचना आप सुनेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप पलुस्कर जी के ही सुपुत्र डीवी पलुस्कर जी की आवाज में आप ये भजन सुनाएं, तो मैं चाहता हूं कि वो श्रोता भी साथ साथ इसके गुनगुनाने लगें। और ये राग मिश्र पहाड़ी में है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
0: जी।
1: ये रचना आप सुने डीवी पलुस्कर जी के मधुर स्वरों में
0: जी।

0: चंद्रशेखर दादा, हम राम रतन धन पा रहे हैं, साथ में हम ज्ञान के रत्न, ज्ञान के मोती भी पाएंगे आपसे बहुत सारे, ये उम्मीद है। हम जरा अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहते हैं कि क्या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किसी स्वरलिपि की पद्धति की शुरुआत की?
1: हमारे यहाँ दो संगीत स्वरलिपि पद्धतियां बनाई गई। पहली थी जो भातखंडे जी द्वारा बहुत उसका प्रचार किया गया, वो आसान है। पलुस्कर जी ने जो संगीत लिपि बनाई वो कठिन तो है, पर वो सांगीतिक दृष्टि से बिल्कुल संगीत के व्याकरण को मानती हुई है कि कहाँ पर तीन मात्रा, कहाँ चार मात्रा, कहाँ एक मात्रा, तो उसके उन्होंने चिन्ह अलग बनाए। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि जो स्टाफ नोटेशन था उससे भी वो प्रेरित थे कि एक ये ऐसा चिन्ह होगा तो चार मात्रा का होगा, ऐसा चिन्ह होगा तो आठ मात्रे का हो, जो स्टाफ नोटेशन में, वेस्टर्न नोटेशन में हम लोग करते हैं। तो पलुस्कर जी का जो नोटेशन है वो बहुत ही वैज्ञानिक है
0: जी जी,
1: पर भातखंडे जी का जो नोटेशन है वो बहुत सरल होने के कारण उसका ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। हमारे लिए दोनों ही स्वरलिपियां अच्छी हैं, ये वैसा ही है जैसे माँ अच्छी है या पिताजी अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, जिसको जिसमें सुविधा हो
0: जी।
1: पर प्रचारित जो ज्यादा है वो भातखंडे जी वाली स्वरलिपि है
0: जी। बहुत अच्छी जानकारी थी और विद्यार्थियों का जिक्र आपने किया था, तो हमें लगता है कि संगीत सरिता कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक पाठशाला की तरह है। शेखर दादा, अब संगीत सरिता कार्यक्रम की इस कड़ी के लिए हम बातों को अपने समेट रहे और कल के संगीत सरिता में कुछ नई बंदिशें लेकर आएंगे, कुछ नई भक्ति रचनाएं लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की पहली कड़ी, तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

ठीक 7 बजे आप सुनेंगे मराठी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: झुक गया आसमां, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का,

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म

साथियों जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, हर लम्हा हर पल आपके साथ।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए अब सुना जाए अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें।

0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
1: कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है बॉयफ्रेंड।

राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जय माला अब समाप्त होता है। जय हिंद।

0: इनसे मिले कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। यू शेप की गली एक चर्चित नाटक आपने मंचित किया और इस पर फिल्म बनी इन गलियों में। फिल्म में जो एक्टर है विवान शाह, जाने माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह के सुपुत्र हैं, तो उन्हें आप लोगों ने कैसे ढूंढा, उनसे कोई मुलाकात हुई? और भाग्यश्री है, उनकी लड़की भी है, तो इन कलाकारों से आपकी मेल मुलाकात हुई?
1: मैंने, मुझे याद है विवान को मैंने स्क्रिप्ट सुनाई थी सबसे पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी ऑफिस में
0: जी,
1: तो नटशेल में छोटे में उनको कहानी सुनाई थी। और अवंतिका और विवान दोनों को एक नरेशन दिया था मैंने। मैंने भी बहुत सीखा इन लोगों से, बहुत मेहनती लोग हैं। मुझे याद है कि जब पहला नरेशन हुआ था तो अवंतिका, क्योंकि मुंबई की हैं और जुहू में उनका घर है, जैसे आजकल इंग्लिश उनकी पहली जबान है और हमारी फिल्म में यूपी का डायलेक्ट था, पर जिस तरह से उन लोगों ने मेहनत की वो बड़ा सराहनीय है,
0: निभाया काफी,
1: बहुत मेहनत की उन्होंने और वो डेडिकेशन मैंने देखा कि बहुत जरूरी है। मतलब टैलेंट तो होता ही है पर हार्डवर्क की भी वैल्यू बहुत मैंने समझी उस दौरान।
0: भाग्यश्री की लड़की है अवंतिका
1: जी, जी
0: तो उन्हें भी देखा, काफी अच्छे से अदायगी निभाई और विवान ने तो बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की ही। वो तो हमें लगता है दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस को विरासत पे मिली है ये।
1: बिल्कुल
0: कला।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और शूटिंग कहाँ की है?
1: लखनऊ की है, लखनऊ में चौक के पास एक जगह है, वहां पे हमने शूट किया था। जैसे मैंने बोला कि यू शेप की गली नाम था नाटक का और फिल्म का नाम था इन गलियों में, तो हम लोग एक वैसी गली ढूंढ रहे थे जो एक यू शेप की हो, मतलब हम एक तरफ से एंटर करें और यू की तरह दूसरी तरफ से निकल जाएं। और शूटिंग की खास बात, मैं जिन दिनों पे वहां पे था मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वो जो चारों तरफ जितने लोग थे रियल लोकेशन पे शूट हो रहा था
0: जी,
1: बड़े कोऑपरेटिव थे। और अवंतिका का मुझे ध्यान आ रहा है कि वहां जो महिलाएं थी वो उनके साथ टेक के बाद अपने बैठ जाती थी, उन लोगों से बात करती थी, उनसे पूछती थी कि अगर ये लाइन आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे।
0: अच्छा।
1: हाँ, और नेचुरली वहाँ के लोग ज्यादा बेहतर उस बात को बोलते थे।
0: पुनर्वसु जी, इसी फिल्म में इश्तियाक खान, एक बड़े एक्टर
1: जी,
0: और
1: जी।
0: बड़े मचे हुए कलाकार जो नाटक भी करते हैं और फिल्मों में भी काम करते हैं, टेलीविजन भी करते हैं, तो इनसे जुड़ी हुई कोई यादगार बात बताइए।
1: इश्तियाक दादा को तो मैं पहले से जानता था क्योंकि नाटक उनका मैंने देखा था और नाटक में बड़े मंझे हुए कलाकार हैं वो। मुझे याद है जब दिन शूट था उनका किरदार का नाम था भंगा और वो किरदार जो है वो भांग का घोला खाता है फिल्म में, तो उनके जो इम्प्रोवाइजेशंस थे, उनकी जो अपनी जो एडिशंस थी फिल्म में, जैसे मुझे एक संवाद याद आ रहा है, वो हीरो को वो किरदार कहता है कि भांग का गोला खा लो और फिर अपने आप को पृथ्वी से अलग हटके देखो। तो इस तरह के जो छोटे छोटे एडिशंस थे वो स्क्रिप्ट में नहीं थे, वो खुद लेकर आए थे। और ऑफ कोर्स अविनाश सर, वो दोनों साथ में बैठते थे और बहुत सारी चीज, बहुत सारे संवाद जो इम्प्रोवाइज ऑन सेट उन लोगों ने किए वो बड़े बाकमाल थे।
0: कमाल के एक्टर हैं इश्तियाक,
1: कमाल के एक्टर हैं जी।
0: और इनके साथ कोई नाटक भी करने का आपको अवसर मिला?
1: नहीं, मैंने नाटक तो नहीं किया इनके साथ, पर मैंने नाटक देखे हैं इनके खूब सारे। हम लोग जब प्रयागराज इलाहाबाद से आए थे तब भी मैं इनको जानता था कि इनकी फिल्में मैंने देखी थी और मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं कैसे एक्टर से मिल रहा हूँ
0: जी। और पुनर्वसु जी, आपकी जो वेब सीरीज है ये मेरी फैमिली
1: जी,
0: इसके बारे में बताइए, ये क्या इसमें बच्चों की मासूमियत भी है? इसमें कितना मुश्किल होता है ये लिखना कि

0: मासूमियत भी मेंटेन रखना है और परिवार की भावनात्मक जो बातें होती हैं उसको भी उकेरना है।
1: तो ये मेरी फैमिली टीवीएफ की सीरीज है।
0: हाँ।
1: और इसका सीजन 1 और सीजन 2 ऑलरेडी आ चुका था। सीजन 3 में मैंने ज्वाइन किया। हमें याद है कि कहानी और किरदार सारे मुझे पहले से पता थे, मैंने वो शो देखा था। तो उन 5 लोगों की कहानी जिसमें माँ बाप और 2 बच्चे हैं, उनकी कहानी लिखनी थी। तो मैं अपने शहर, क्योंकि स्मॉल टाउन की कहानी है, तो मैं अपने शहर की वो चीज़ें लेकर आने की कोशिश कर रहा था जो लोग रिलेट करें, एक मिडिल क्लास आदमी रिलेट करें। मुझे एक वाक्या याद आता है कि हमारे घर में कहते थे कि अगर बारिश हो रही है तो छत पे जाके छोटा बच्चा अगर बदरफट चिल्लाए तो बारिश रुक जाएगी। और ये सीन मैंने अपने शो में रखना था और उन्हें बड़ा पसंद आया था कि तो ये एक प्रैंक की तरह वहाँ पे यूज़ हुआ था। पर वो भी एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। निखिल सचान हमारे को राइटर थे साथ में, बड़ा सुंदर अनुभव था उन लोग के साथ काम करना।
0: जी, तो कैसे मुलाकात हुई इनके, मतलब इस सीरीज से जुड़े कैसे आप?
1: हमारे एक मेंटोर जैसे ही हैं, विपुल मयंक नाम है उनका, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने, जैसे मैंने आपको एकदम स्टार्ट में बोला कि एक सैंपल सीन लिखवाना हुआ या एक पायलट एपिसोड लिखवाना हुआ, तो बड़ा टीवीएफ का चर्चित शो है गुल्लक, तो उन्होंने बोला था गुल्लक का अगर एक एपिसोड तुम हमें लिख के दो इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ, एक रैंडम कहानी मुझे लिख के दो, मैं बस पढ़ना चाहता हूँ कि कैसे आपकी स्टाइल ऑफ राइटिंग है। तो मैंने उनको गुल्लक का एक एपिसोड लिख के दिया था। उन्होंने कहा था कि अच्छा है और हम चाहते हैं कि एक दूसरा शो है, क्या तुम वो करना चाहोगे? और बस इस तरह से मैं जुड़ गया था ये मेरी फैमिली के साथ।
0: और काफी चर्चित है और काफी सराहना हो रही है इस
1: जी। स्लाइस ऑफ लाइफ का शो है वो, जैसे आजकल जो चल रहा है कि मार धाड़ और एक्शन और इस तरह, ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे बीच की कहानी है, लगता है कि हमारे घर परिवार की कहानी है।
0: मासूमियत
1: है उसमें
0: मेंटेन रखा है। जी, और बहुत ज़रूरत है ऐसी वेब सीरीज बनाने की कि हर जगह थ्रिलर और रोमांच, रहस्य और मर्डर, खून, इस सब से थोड़ा पारिवारिक कहानियों को भी लाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बिल्कुल। ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हम सब यही चाहते हैं। और लगता है कि अगर मार धाड़ के बाद ऐसी सीरीज देखते हैं तो सराहते हैं, जैसे गुल्लक है, पंचायत है,
1: जी जी जी,
0: हम सब पसंद करते हैं। तो खैर, आपकी बात, हम सब की बात जानी चाहिए लोगों तक। और थिएटर भी करते हैं, लेखन भी करते हैं, वेब सीरीज भी लिखते हैं, तो क्या मूलभूत अंतर होता है इन तीनों में?
1: तीनों के माध्यम अलग हैं। जैसे हम अभी रेडियो पे बात कर रहे हैं और थिएटर में बात कर रहे हैं, मैंने एक कॉमन फैक्टर देखता हूँ जो है कहानी। कहानी तीनों में ही होती है। स्टेज पे मैं देखता हूँ कि कोई रीटेक नहीं होता। हमने अगर 30 दिन की रिहर्सल करके एक शो तैयार किया है और हमने लगातार उस पर रिहर्सल किया है, और जब हम वो शो कर रहे हैं तो अगर स्टेज पे कोई गलती हो रही है तो वो डायरेक्टर क्या खुदा भी उसे नहीं बदल सकता। पर फिल्म में और सीरीज में हमारे पास ये, मतलब आसानी होती है कि हम रीटेक ले लेते हैं या हम कट बोल सकते हैं। ये मूलतः अंतर होता है।
0: जी, चुपके चुपके के आपने संवाद भी लिखे।
1: जी जी।
0: तो संवाद और कहानी, इनमें क्या अंतर होता है? मतलब आसान क्या लगता है, संवाद लिखना या अपनी कहानी पर कोई वेब सीरीज बने?
1: दोनों ही मुझे अलग अलग चीजें लगती हैं। पर वो जैसा लगता है कि अगर कहानी माँ है तो डायलॉग उसका बच्चा है और स्क्रीन प्ले उसके उसी का पार्ट है।
0: जी,
1: डायलॉग ऐसी बात हो जो लोगों को याद रह जाए, कोई ऐसा संवाद जो, जैसे पंचायत में प्रहलाद चाचा कहते हैं कि
0: जी जी
1: समय से पहले कोई नहीं जाएगा।
0: जी जी जी,
1: तो वो आपको याद रह जाता है।
0: तो और अभिनय प्रहलाद चा की तो कमाल का अभिनय है। हम लोग तो प्रहलाद चा
1: हमारे शहर के हैं वो।
0: जी, शहर का नाम लिया, प्रयागराज के रहने वाले हैं। वहाँ की कौन सी याद यहाँ पर मिस करते हैं, कौन सी बात आप मिस करते हैं मुंबई के महानगर में?
1: मैं सबसे ज्यादा अब अपने शहर को अपने घर से देखता हूँ। मुझे याद है जैसे जब मेरे पिताजी आ रहे थे, वो वाकया मुझे याद आया कि तो कमलेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम मुंबई आ रहे हो, मुंबई में समंदर है और समंदर जो है वो तैरने के लिए है, तो खूब तैरना, पर इसका पानी मुंह में मत लेना नहीं तो स्वाद खारा हो जाएगा।
0: क्या बात है।
1: तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हाथ पैर मार के तैर सकूं, बस मुंह में पानी ना लूं, ऐसा ख्याल है मेरा।
0: जी जी। यश मालवीय जी से कोई आत्मीय क्षण याद हो तो बांटिए हमारे श्रोताओं के साथ, कोई याद?
1: ताऊ के साथ तमाम पल हैं। ताऊ, क्योंकि मैं पता नहीं अपने आप लौट के पिता पे आ जा रहा हूँ। ताऊ की कविता है मेरे पिता के लिए, छोटी सी है।

0: जो उन्होंने लिखी थी कि इस शहर में बेशुमार भीड़ है और लोकल में किसी से छिलता है मेरा कंधा, पलट के देखता हूँ कहीं मेरा भाई तो नहीं, मुझे पूरा शहर का चेहरा मेरे भाई जैसा लगता है और मैं कहीं भी यहाँ भटकने लगता हूँ किसी संवाद में किसी गीत में तो ताऊ ही मेरा सहारा है। एक कॉल पे मुझे कई सारे ऐसे डायलॉग और ऐसे संवाद आ जाते हैं जो मेरे तुरंत काम आ जाते हैं।
1: जी, अंशु मालवीय आपके रिश्ते में क्या लगते हैं?
0: वो मेरे चाचा लगते हैं।
1: मतलब पूरा परिवार आप का लेखन की दुनिया में है?
0: जी जी, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है ऐसा कहेंगे।
1: जी, और आपका जो लेखन क्षेत्र है और आपके आपके बच्चे भी हैं?
0: तो मेरी बेटी है वल्लरी, उनके लिए हमारे चाचा जो अंशु मालवीय ने अपने ने नाम लिया, तो एक बड़ा प्यारा सा गीत लिखा था, अगर आप कहें तो मैं दो लाइन।
1: जी जरूर जरूर सुनाएं।
0: तो उन्होंने लिखा था, उनका नाम है वल्लरी बेटी का, उन्होंने लिखा था, वल्लरी सुन्नरी वल्लरी नींद इंतजार में है खड़ी,

0: मस्खरी वल्लरी सुन्नरी वल्लरी।
1: क्या बात है, हमें लगता है कि बच्चों को कविता ज़रूर सिखानी चाहिए, छोटे बच्चों को, और कविता कहानी से जोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि ये साहित्य की जो धरोहर है, विरासत है, उन तक पहुँचे। और आप नाटक निर्देशित भी करते हैं, लिखते भी हैं?
0: जी जी, मैंने दो नाटक जो निर्देशित किए, एक उसमें एक कैकेई पे मैंने एक नाटक किया था और यू शेप की गली जो मैंने आपको बताया।
1: जी, तो अब आने वाली योजनाएं क्या हैं?
0: मैं एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर हैं अनिरुद्ध राय चौधरी, उन्होंने पिंक फिल्म बनाई थी।
1: जी जी,
0: तो एक उनके साथ मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ।
1: जी,
0: बाकी उसी समंदर में हाथ पैर मार रहा हूँ।
1: जी जी, शुभकामनाएं कि फिल्म चर्चित हो और हिट हो और जल्द बने, जब बन जाए तो फिर हम सब आएंगे देखने। और अगर आपको अपने अब तक के सफ़र को कहानी में लिखना हो तो आप क्या करेंगे?
0: मुझे लगता है कि अभी उसमें वक्त है ममता जी, अभी कहानी का शायद पहला चैप्टर भी नहीं लिखा गया है। इस तरह से अगर मैं सोचने लगा तो मुझे लगता है कि वो यात्रा बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएगी। जैसे हमारी शुरुआत में बात हो रही थी कि क्या कोई हमने कभी कोई किताब लिखी, तो वो मुझे लगता है कि वो ख्वाब है और उसे और सीखना और उसे और वक्त देने की जरूरत है।
1: OTT की दुनिया में जहाँ पर इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, इतने सारे वेब सीरीज हैं, टीवी सीरियल्स हैं, ऐसे में अपने लेखन को दर्ज करना कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण है?
0: काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और मुझे लगता है ये पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री है। एक पंक्ति मुझे ध्यान आ रही है, जैसे मैंने लिखा था, जैसे एक्टरों को ऑडिशन देना पड़ता है, तो मुझे लगता है फ्रीलांस राइटरों के लिए है कि राइटर का कॉन्सेप्ट सुनाना एक्टर के ऑडिशन जैसा है, किसी तगड़े पंच पे एक लाफ्टर रिजेक्शन जैसा है। तो आपको लगता है कि आप अपनी यात्रा में आप लगातार, आजकल तो बिजनेस और जिस तरह से आपने OTT बोला, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इन्वॉल्व हैं, सब फिल्मों की फिल्में बना रहे हैं हम लोग कि वो फिल्म चली तो वैसी सी कुछ कहानी होनी चाहिए। जिसमें मुझे जावेद जी की बात याद आती है, उन्होंने वो कहानी सुनाई प्रोड्यूसर को और प्रोड्यूसर ने बड़ी तारीफ की कि कहानी बड़ी अच्छी है लेकिन ये किसी फिल्म की तरह नहीं लग रही है, कुछ ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं है।
1: जी जी,
0: तो अपनी मौलिकता को और इन सब चीज़ों को देखना ये बड़ा ज़रूरी है।
1: जी, तो आपने जो सपना देखा था, जो सपना लेकर आए थे मुंबई में, आपको मतलब अंदाज़ा था कि इतनी जल्दी आपको इस तरह कामयाबी मिल जाएगी और जल्द से फिल्म भी लिख लेंगे, टीवी सीरियल, वेब सीरीज?
0: मैं फिर इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, मैं भी, मुझे लगता है कि बड़ी लंबी यात्रा है। और कल ही मैं एक शो लिख रहा था और मुझे ध्यान आया था, उसमें एक लाइन थी, तीर्थ नहीं है केवल यात्रा। तो मुझे लगता है मैं अभी इस यात्रा में हूँ, देखता हूँ कि कहाँ पहुँचती हैं चीज़ें।
1: जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी इस लंबी यात्रा के लिए। इस यात्रा में फिल्मी दुनिया जो महासागर है, महासागर में आप मंजिल के पार जाएं, मंजिल के करीब जाएं, यही शुभकामनाएं पूरे विविध भारतीय परिवार की ओर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म और टेलीविजन लेखक पुनर्वसु मालवीय से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे

इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सौरभ घारूका, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। इनसे मिलिए।

FM 102.8 पर आप ये विविध भारती मुंबई के साथ ठीक 8:05 पर आप सुनेंगे मराठी में राष्ट्रीय समाचार। लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म CID से। इस गीत को आवाज दी है शमशाद बेगम ने और संगीत से सवारा है OP नैयर ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोन रौप्य आणि तीन कांस्य पदक. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ. कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में.

0: प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए सोनू निगम और विनोद राठौड़ की आवाजों में। गीतकार संगीतकार है नितिन रायकवार और फिल्म का नाम है स्टाइल।
1: समझ में नहीं आ रहा तेरा घर का पता है यार, धुंधे धुंधे परेशान हो गया।
2: तो कटिंग आना है।
1: अरे मैं क्या बोलूं,

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान और उदित नारायण को अगले गीत में। इस गीत को लिखा है अब्बास टायर वाला ने, संगीत है विशाल का और फिल्म का नाम है लव के लिए कुछ भी करेगा।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
4: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
3: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
5: अगर तुम मिल जाओ।
3: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
6: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
7: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम में स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है मोक्ष।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है लज्जा।

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है।

0: ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
1: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मित मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मित की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
2: भारत के कैप्टन स्मित ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
3: We are very, very proud of the bravery and the courage.
4: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
3: We are very, very grateful and we are really, really extremely proud.
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
5: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मित मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मित के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मित मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मित को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं।

0: उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
1: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
2: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
3: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और फिल्म का नाम है चोरी चोरी।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है लव मैरिज।

तो दिल पे चले कटारी।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है जिद्दी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की ज़ुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
2: कन्हैया जी का ये सब के मन बहलावा रे भैया।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आज और कल।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस

0: सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1900

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

0: तुझे।
1: दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जब तुम्हें मैंने पहली दफा देखा था, मुस्कान ने तुम्हारी मेरे दिल को जीता था। जाने तुम्हारी काली आंखों का जादू था या गोरे गालों की हंसी, जाने अनजाने ही सही मैं तुम्हारे प्यार के जाल में फंसी।

अभी तो मेरी आंख में आंसू पूरी तरह आए भी नहीं थे और तुमने उन्हें समझ लिया। तुम्हारी इस अदायगी ने मेरे पूरे दिल को जीत लिया। सोचती हूँ इतनी समझदारी तुम में कैसे आई होगी। शायद तुमने भी कभी किसी से

समंदर के किनारे अकेले बैठा करते थे। न जाने तुम किसका इंतजार किया करते थे। नसीब में जब हीरा लिखा हो तो सोने के खोने का

अंतराल के बाद एक बार फिर छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को तन्हा पाती हूँ, हर शाम तुमसे मिलने की चाहत में दर पर अखियां बिछाती हूँ, तुम्हें आता देख खुशी से बावरी हो जाती हूँ, और जब तुम जाते हो तो बिछड़ने के ख्यालों से बेचैन हो जाती हूँ।

0: होंगे।
1: भरे बाजार में जब तुम मेरा हाथ पकड़ते हो अच्छा लगता है, जब किसी छोटे बच्चे की तरह तुम मेरा ख्याल रखते हो अच्छा लगता है, मेरी किसी नादानी पर जब तुम प्यार से डांटते हो अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ जीवन का हर ख्वाब बिल्कुल सच्चा लगता है।

मेरी खुशी का जरिया हो तुम, मेरे सुकून का दरिया हो तुम, दुआओं में जिसे मांगा था वो हकीकत हो तुम। अब हर जन्म में मेरे मेरे और सिर्फ मेरे हो तुम।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर

0: विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार दिव्यांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।

ढलती जाए रात। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम अब बस यहीं तक, होगी मुलाकात फिर कल। इस वादे के साथ दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।